FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:59 होने ही वाले हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: 107.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री

0: मंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारी सभा के शेष रहे प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

6:15 पर आप सुनेंगी भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बाहर आप सुन पाएंगे 6:45 पर। 7:20 समय रहेगा श्री रामचरितमानस गान का। नमस्कार चूरू कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:30 पर। 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले समाचार प्रभात और उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में हम आपको सुनवाएंगे गजलें। समय रहेगा 8:30।

9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। समूह सुरों में देश गान आप सुन पाएंगे 9:10 पर। 9:15 पर आप सुनेंगे साहित्य सुगंध में हिंदी कहानी रात बाकी है, कवि कवि

सी होंगी स्नेहलता, माफ कीजिए कहानीकार होंगी स्नेहलता। 9:30 पर आप सुनेंगे किसी एक फिल्म की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र संसार।

विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र। कार्यक्रम विवरण होगा 11 बजे। 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे 12 बजे। 12:30 समय रहेगा माटी के स्वर कार्यक्रम में अल्लाह चिलाए बाई और साथियों की गाई हुई लोक रचनाओं का। 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

महिलाएं सुन पाएंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। समय रहेगा 1:05। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले मिड डे न्यूज और उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा का आगाज होगा कार्यक्रम युववाणी के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। 7 बजे किसान श्रोता सुन पाएंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9। 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है। 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। 10:30 पर आप सुन पाएंगे सुगम संगीत में गजलें। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।

साथियों, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है जिसमें उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हम सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो हार हमें तोड़ देती है, जो असफलता हमें निराश कर जाती है, वो असल में हमें कुछ देने आती है। जी हाँ, आज का हमारा चिंतन इसी विषय पर केंद्रित है कि असफलताएं भी देती है सीखने के अवसर।

किसी ने क्या खूब कहा है, गिरते हैं शहर सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उदासी, निराशा और कभी कभी क्रोध की भावना पैदा हो जाती है। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन चिंतन की कसौटी पर यदि हम इसे परखें साथियों, तो असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है।

साथियों, असफलता हमें बताती है कि हमारे प्रयासों में कहां कमी रह गई थी। असफलता दरअसल एक फीडबैक है, एक मार्गदर्शन है हमारे लिए। यह हमारे भीतर के अहंकार को तोड़ती है और हमें जीवन से जोड़ती है। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ, वह कभी अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान ही नहीं सकता। विफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में खुद को कैसे संभालना है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है।

साथियों, इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया के जितने भी लोग महान हुए हैं, उनकी सफलता की इमारत असफलताओं की नींव पर ही खड़ी हुई थी। अगर हम बात करें थॉमस एल्वा एडिसन, अगर उनको लें तो बिजली का बल्ब बनाने से पहले वे हजारों बार असफल हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी बार असफल हुए, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यह नजरिया ही इंसान को महान बनाता है। साथियों, अगर हम बात करें हमारे देश के महान गौरव मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, उनको जब याद करें तो जब उनका पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 क्रैश होकर बंगाल की खाड़ी में गिर गया था, तो वे टूट गए थे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस बड़ी असफलता से सीखा, कमियों को सुधारा और अगली बार इतिहास रच दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जो असफलता को सफलता में बदल देते हैं। कला के क्षेत्र में बात करें तो महानायक अमिताभ बच्चन को शुरुआत में उनकी भारी आवाज और कद के कारण ऑल इंडिया रेडियो से भी रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में वो हर तरीके से वो परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने हर बार शून्य से शुरुआत की। आज भी सदी के महानायक हैं।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आगाज में हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में हनुमान जी की आरती।

अनुराधापुर वाले और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे आरती श्री रामायण जी की। अब आपको सुनवाते हैं रविंद्र जैन और साथियों की आवाज में संकट मोचन बालाजी पर ये भजन।

आइए साथियों, अब आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में ये बालाजी पर बालाजी का भजन। उससे पहले आप सुन रहे थे रविंद्र जैन और साथियों की आवाज में भजन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। कार्यक्रम के आगाज में यशुदास और लता मंगेशकर की आवाज सुनी। त्रिशूल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और खय्याम ने संगीत दिया है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में नूरी फिल्म का गीत। गीत रचना जान निसार अख्तर की थी और खय्याम का था संगीत।

ये वादा रहा। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ों में, गुलशन बाबरा की शब्द रचना और संगीत आर डी बर्मन का।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत

सावन की घटा इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। प्राण जाए पर वचन न जाए इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। एसएच बिहारी की शब्द रचना है और ओपी नैयर का संगीत।

गंगा तेरे देश में। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है।

हिमालय की गोद में इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर की शब्द रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में प्यारा सा नगमा, अगर तुम ना होते फिल्म का नाम, गुलशन बावरा की शब्द रचना और आर डी बर्मन का संगीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। कलाकार हैं ए हरिहरन और सुरेश वाडकर। संगीत है सतीश भाटिया का। कड़ी है 395।

पक्षीराज गरुड़ को काकभुशुंडी अपने एक पूर्व जन्म में शाप मुक्ति की कथा सुना रहे हैं। हजार योनियों में जन्म लेकर उन्हें भटकना तो पड़ा, किंतु कृपालु शंकर ने उस दुस्सह दुख से मुक्त कर दिया जो जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने में होता है। उन्हें ये

अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। कलाकार ए हरिहरन और सुरेश वाडकर थे, संगीत सतीश भाटिया का था, कड़ी थी 395। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

आकाशवाणी चूरू के सभी श्रोताओं को इस खूबसूरत और ताजगी भरी सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार चूरू, और माइक्रोफोन के इस पार मैं हूं आपका दोस्त चंद्र प्रकाश बेदी। तो स्वीकार करें नमस्कार। साथियों, हमारे चूरू शहर की तासीर ही कुछ ऐसी है। यहाँ की कड़ाके की ठंड भी मशहूर है और चिलचिलाती गर्मी भी। लेकिन इन बदलते मौसमों के बीच जो चीज हमें हमेशा तंदुरुस्त और खुश मिजाज बनाए रख सकती है वो है हमारी सेहत। और आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सेहत का सबसे बेहतरीन और मुफ्त खजाना है हमारे ही भीतर छिपा है, हमारी सांसों में। जी हाँ, आज नमस्कार चूरू कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के लाभ की। इस विषय पर हम बात करेंगे। सांसों की लय को समझना और उन्हें साधना ही प्राणायाम है। तो आइए आज सांसों के इसी खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। लेकिन सफर की शुरुआत बिना एक सुहाने गीत के कैसे हो सकती है? तो सुनते हैं दिलीप कुमार साहब की फिल्म मधुमती का ये सदाबहार गीत, जो इस सुबह को और भी खुशनुमा बना देगा।

वाकई जब मौसम सुहाना हो और मन शांत हो तो जिंदगी का सफर बेहद हसीन लगने लगता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू पर, नमस्कार चूरू। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे प्राणायाम की। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति या सांस, और आयाम का अर्थ है उसे नियंत्रित करना या उसका विस्तार करना। हम दिन भर में हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं? शायद नहीं। प्राणायाम हमें यही सिखाता है। जब हम लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर के एक एक सेल यानी कोशिका तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है। इसके शारीरिक लाभ साथियों अनगिनत है। भस्त्रिका, कपालभाति जैसे प्राणायाम हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाती है कि मौसमी बीमारियां हमारे आसपास नहीं फटकती है। साथियों, इसके अलावा सही तरीके से सांस लेने पर हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और पाचन तंत्र भी दुरुस्त होता है। मतलब साथियों, सांसें सही तो सेहत सही, और जब सेहत सही तो जिंदगी का

हर पल सुहाना सफर बन जाता है। जिंदगी की इसी मस्ती और ऊर्जा को बयां करता हुआ एक बहुत ही प्यारा और ऊर्जावान आपको गीत सुनाते हैं किशोर कुमार की आवाज में।

जिंदगी एक सफर है सुहाना, और इस सफर को बिना किसी तनाव को तय करना है। बिना किसी तनाव के तो साथियों योग और प्राणायाम से बेहतर कोई साथी नहीं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी चूरू के साथ। श्रोताओं, प्राणायाम केवल शरीर को ही फायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि ये हमारे मन और मस्तिष्क के लिए भी एक सुपर फूड की तरह काम करता है। आज के समय में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं आम हो गई है। हर कोई जो साथी है ना हमारा, किसी न किसी तनाव में है। ऐसे में अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम किसी जादू से कम नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। जब आप आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के आने जाने पर लगाते हैं तो आपका दिमाग शांत होने लगता है। विचारों की जो उथल पुथल मन में चल रही होती है वो ठहर जाती है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन या फोकस जो है

इतने सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। साथियों, समय तेजी से भाग रहा है और यही जिंदगी की सच्चाई है। जो पल बीत गया वो वापस नहीं आता, इसलिए जो समय हमारे पास है उसे अपनी सेहत और अपनी खुशियों के लिए जीना चाहिए। इसी खूबसूरत संदेश के साथ सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
3: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। दोस्तों, बचपन की यादों का जिक्र हो और हमारी पहली साइकिल का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? वो कैंची चलाना या उसको सीखना, बार बार गिरना, घुटनों पर चोट लगना और फिर एक दिन हवा से बातें करते हुए हैंडल छोड़कर पेडल मारना। साइकिल महज ये दो पहियों की सवारी नहीं, बल्कि हम में से कई लोगों के लिए आजादी की पहली उड़ान रही है। जी हाँ साथियों, हर साल हम विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं ताकि इस शानदार, सेहतमंद और पर्यावरण के अनुकूल सवारी की अहमियत को याद रख सकें। तो आइए आज अपने इस कार्यक्रम में साइकिल के इसी सुहाने सफर को जीते हैं। और जब बात साइकिल के सुहाने सफर की हो तो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में फिल्म मेरे सनम का वो मशहूर गीत कैसे भूल सकते हैं, जिसमें साइकिल पर सवार होकर हीरो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है।

रफ़ी साहब की आवाज़ और ये बेहतरीन धुन सुबह सुबह मन को एकदम तरोताज़ा कर देती है। आप सुन रहे हैं साथियों, नमस्कार चूरू।

श्रोताओं, साइकिल चलाना सिर्फ बचपन का शौक नहीं है, बल्कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह सेहतमंद रहने का सबसे बेहतरीन और सस्ता तरीका है। हम फिटनेस के लिए जिम में जाकर पसीना बहाते हैं, लेकिन अगर रोज सुबह शाम को बस 30 मिनट साइकिल चला ली जाए तो यह हमारे दिल की सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। और फिर सेहत ही क्यों, यह हमारी प्रकृति के लिए भी सबसे अच्छी दोस्त है। न पेट्रोल का खर्चा, न धुएं का प्रदूषण और न ही ट्रैफिक जाम की फिक्र। कभी सुबह सुबह चूरू की शांत और खुली सड़कों पर साइकिल लेकर निकलिए, ठंडी हवा का जो एहसास चेहरे पर होता है ना, वो किसी महंगी गाड़ी में नहीं मिल सकता। साथियों, आपने बॉलीवुड में भी साइकिल को बड़े ही प्यार और मज़ेदार अंदाज में दिखाया जाता है। आपने पड़ोसन फिल्म का भी गीत देखा होगा, सुना होगा। आपको याद है जहां सायरा बानो अपनी सहेलियों के साथ साइकिल पर निकली है और पीछे पीछे सुनील दत्त साहब आ रहे हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में जो मज़ा है, वो चुलबुला गीत आपको सुनवा रहे हैं।

वाकई साइकिल की सवारी में एक अलग ही मस्ती और अल्हड़पन है। आप जुड़े हैं आकाशवाणी चूरू के साथ। श्रोताओं आपको बताते हैं, मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना पड़ता है। ये बात कितनी सच है ना।

साथियों, गांव में मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी तो सबने देखी है, पर आपको पता होगा कि शहर में भी तो ऐसा होगा। तो आपको जो आप बताते हैं, राजस्थान सरकार ने भी आपकी सुन रखी है। सरकार लेकर आई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जी हां, आप गांव ही नहीं, हमारे राजस्थान या लगभग सभी शहरों और कस्बों को मिलेगा गारंटी वाला काम। अपनी चाय की चुस्की को तेज करते हुए सुनते रहिए बात कि आप राजस्थान के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के दायरे में रहने वाले होने चाहिए तो आपको ये लाभ मिल सकता है। उम्र की बात करें तो आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी युवा जोश के साथ। तो तजुर्बेकार बुजुर्ग तक सब ऑल इज वेल हैं साथियों, बस आपके भीतर काम करने की जो है इच्छा होनी चाहिए। हाँ, अकुशल शारीरिक श्रम या स्वच्छता जैसे कामों को करने की इच्छा आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। साथ ही आप सुनेंगे भी पैसे कितने मिलेंगे, तो आपको बता दें।

आपको काम कितने दिन मिलेगा और जेब में कड़क नोट कैसे आएंगे? अरे भाई, तो राजस्थान सरकार बड़े अच्छे से आपका सहयोग कर रही है। इस योजना में आपको एक साल में पूरे 125 दिन गारंटी शुदा रोजगार मिलता है। काम भी आपके घर के पास, जैसे पार्कों की देखरेख, पर्यावरण संरक्षण, हेरिटेज कंजर्वेशन और स्वच्छता अभियान। और हाँ, आपको सीधे पैसे बैंक खाते में मिलेंगे। सबसे जरूरी है मारोजन आधार कार्ड, यानी ध्यान रखें बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपके अपडेटेड होने चाहिए।

0: जी हाँ, चलते रहने का ही नाम जिंदगी है। और इस कार्यक्रम के साथ ही आप अनुमति दें आपके रेडियो साथी चंद्र प्रकाश बेदी को नमस्कार। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चोरू। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का रिले किया जाएगा।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी ₹3,000 की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
5: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके

0: कुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवान्नों में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगरपालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75

0: अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये

0: आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a five-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will visit facilities related to the energy, pharmaceutical and automobile sectors. The visit aims to explore opportunities for collaboration and gain insights into India's technological and industrial capabilities. With Ishani and Dipendra, Tripti Srivastava, Akashwani News, Delhi.
2: Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thawar Chand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4:05 p.m. More from our correspondent.
5: After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28,

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं। आप सुन रहे हैं सुर संगम कार्यक्रम में गजलें।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे प्यारी सी गजल। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, 9 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्र सरकार ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश में आए मौसम के बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट, गर्मी से मामूली राहत। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में विशेष नवाचार और अभिनव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया जाएगा। इससे पहले कल जल स्रोतों का पूजन किया गया, साथ ही इनकी साफ सफाई के काम भी किए गए। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कुम्हेर स्थित कच्चा कुंडा पर जल पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पूरे देश में एक मिसाल बन रहा है।

0: उन्होंने कहा कि जल स्रोतों की साफ सफाई सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सभी नगर पालिकाओं में लोक कल्याण मेले लगाए जा रहे हैं। इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को योजना से जोड़ने सहित ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए इस मेले में रेहड़ी, ठेला संचालक, फेरी वाले और छोटे व्यापारियों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
1: लोक कल्याण मेले के दौरान पथ विक्रेताओं, रेहड़ी ठेला संचालकों, फेरी वालों, छोटे व्यापारी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही है। अभियान के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण, डिजिटल ऑन बोर्डिंग, भुगतान को बढ़ावा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। देश भर में आयोजित इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 3 चरण में 90,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजना से जोड़कर आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। सोन नगरी में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह नजर आ रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: राज्य में अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकार समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। कल शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि डेयरी नेटवर्क में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि अब सहकारी समितियों का आवंटन भी ऑनलाइन किया जाएगा। श्री कुमावत ने कहा कि किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाकर उन्हें अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां तय समय में जारी करने को कहा, साथ ही इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अब तक 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। राज्य में इन दिनों पुलिस की ओर से बाल मजदूरी के खिलाफ उमंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण बनाना और पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के लिए हर जिले में थानेवार विशेष रेस्क्यू टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों में महिला और बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल कल्याण समिति और एनजीओ के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। पाली पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह ने कल एक बैठक कर अधिक से अधिक लोगों को बाल तस्करी और मजदूरों के विरुद्ध जागरूक करने के निर्देश दिए, साथ ही इन कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा। आज विश्व साइकिल दिवस है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 3 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य किफायती, बिना ईंधन वाले, पर्यावरण और स्वास्थ्य हितैषी एवं परिवहन के माध्यम साइकिल को लोकप्रिय बनाना है। इस वर्ष की थीम हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना रखी गई है। केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके जरिए साइकिल के उपयोग को लगातार बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर आज अजमेर में साइकिल रैली रखी गई। ये रैली आनासागर चौपाटी में शुरू हुई। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के कई नागरिक नियमित रूप से साइकिल का उपयोग कर स्वस्थ जीवन शैली और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से कई स्थानों पर कल भी आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रही। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई स्थानों पर दिन का पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर गया। भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटों में लगभग 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड हुई। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। वहीं माउंट आबू में रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज और कल सभी संभागों में

0: आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान कहीं-कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ आने की आशंका है। बीकानेर, चूरू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां तय समय में जारी करने को कहा, साथ ही इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अब तक 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्र सरकार ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश में आए मौसम के बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट, गर्मी से मामूली राहत मिली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह सुरों में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए साहित्य सुगंध कार्यक्रम में हिंदी कहानी रात बाकी है। कहानीकार हैं स्नेहलता।
1: दिशा ने करवट बदली और हाथ बढ़ाकर बिस्तर पर टटोलने लगी। यश को समीप में न पाकर वह अचकचाकर उठ बैठी। पति को देखने के लिए लाइट जलाई तो देखा कमरे में वह अकेली है, लेकिन यश कहाँ है? नया शहर, नया घर, हर वक्त एक आशंका से उसका दिल धड़कता रहता है। जानवी की कही बातें उसके कानों में गूंजने लगी। दिशा यार, पुलिस ऑफिसर की बीबी हो तुम, अपराधी तो हर वक्त तुम्हारे आजू बाजू ही रहेंगे। हर वक्त सावधान रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जानवी ने उसे चेताया नहीं बल्कि डरा ही दिया था। पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। रात बाकी है, अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ, फिर यश बिस्तर छोड़कर कहाँ चले गए होंगे? भय के साथ साथ चिंता ने उसे विचलित कर दिया। सोए हुए ही आवाज लगानी चाही, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप ही रही। देखा दरवाजा तो बंद है, जैसा उसने रात को किया था वैसा ही। तो क्या टॉयलेट में है? उसने समीप जाकर देखा, झिर्री में से रोशनी की किरण नजर आई। वह चुपके से उठकर दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करने लगी। अनवरत नल चलने की, पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। दिशा ने होले से दरवाजे पर धक्का लगाया, न खुला तो आवाज लगाई, डार्लिंग क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है? हाँ दिशु, बस अभी आता हूँ। पति की आवाज सुन उसे तसल्ली हुई। वह वापस आकर बेड पे बैठ गई। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांक कर देखा, घुप अंधेरा। याद आया आज तो अमावस की रात है, आसमान में बादलों का साया भी छाया हुआ है। चांद तारे रात को एकाकी छोड़ मानो कहीं दूर निकल गए हैं। सुन्नी गोद बेचारी अकेली रात। अपनी इस कल्पना पर वह खुद ही तनिक हंस पड़ी। मोबाइल ऑन कर घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे हैं। तब तक यशवर्धन भी आकर बेड पर बैठ गए, गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए। दिशा ने हैरत से पूछा, इस वक्त नहा कर आ रहे हैं जनाब? लेकिन एसपी साहब, अभी तो रात बाकी है, सवेरा हुआ ही नहीं और आप नहा भी आए, घड़ी तो देखी होती। पति की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए उसे कुछ भी उत्तर न देते देख फिर से दिशा बोली, क्या आधी रात को कहीं रेड मारने का इरादा है, या फिर ख्वाब में बड़े साहब का ऑर्डर सुन लिया है? यश ने पत्नी की तरफ देखे बिना संक्षिप्त उत्तर दिया, नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, चलो सो जाओ, और हाथ बढ़ाकर स्विच ऑफ किया और सोने की तैयारी करने लगे। दिशा को कुछ भी समझ नहीं आया पति का यह अजीब बर्ताव उसे असहज महसूस कराने लगा। जब कहीं जाना नहीं तब आधी रात को यूं उठकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाना, फिर बिना कोई ठोस

कारण बताए चुपचाप सो जाना। दो दिन से देख रही है वह, कुछ बेचैनी है यश के दिलो दिमाग में, हर वक्त ख्यालों में खोए रहना। उसने पति की बगल में लेटते हुए गीले बालों में अंगुलियां फिराते हुए प्यार से पूछा, मेरे प्यारे पति के लिए अपनी पत्नी का प्यार काफी नहीं है? मेरे अलावा और कौन है जो आपको सोने नहीं देता? मेरे पतिदेव की नींद में खलल डालने की गुस्ताखी किसने की भला? नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, बस अचानक आंख खुली और उठ बैठा मैं, और सोचा कि जब उठ ही गया हूँ तो नहा लेता हूँ फ्रेश होने के बाद, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैंने टाइम देखा ही नहीं, अगर देख पाता तो वापस सो जाता। चलो अब सो जाओ वरना सुबह लेट हो जाएगी। इतना बोलकर यश करवट बदलकर सोने का उपक्रम करने लगे। लेकिन कल शाम भी आप खाना खाकर वॉश बेसिन पर जब हाथ धोने लगे तो बस धोते ही रहे 10 मिनट तक, और मैंने ही आकर नल बंद किया था, याद है? दिशा ने फिर से अपनी चिंता जाहिर की। हाँ, उस वक्त मैं कुछ सोचने लगा था, इसलिए नल बंद करना ध्यान ही नहीं रहा। और क्या हुआ जो तुमने नल बंद कर दिया? अगर तुम न करती तो क्या नल बंद ही नहीं होता? यश ने झुंझला कर जवाब दिया। जनाब, इतना भी न सोचा करें, चलो अब सो जाते हैं। इतना कहे वह बच्चे की तरह सहलाकर प्यार से पति को सुलाने की चेष्टा करने लगी। यश भी पत्नी के प्यार का परस पाकर सहज होने की चेष्टा करने लगे। यशवर्धन 30 साल का नौजवान, 4-5 साल की पुलिस की नौकरी की तैयारी के बाद एग्जाम पास कर अभी अभी पुलिस इंस्पेक्टर के पद तक पहुंच पाया है। शादी को 2 साल हो गए लेकिन कोई बच्चा नहीं। सुंदर सुशील पढ़ी लिखी पत्नी है दिशा। माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी है। एक बड़ा भाई और उसका परिवार गांव में, जिनके पास ही पिता भी रहते हैं, इसलिए पति को पत्नी को अपने साथ ही ले आए हैं। खाने पीने की दिक्कत न हो, बेटे का ख्याल रखे, इसलिए पिता ने स्वयं ही कहा था, बेटा है तो नई जगह, बहू को साथ ले जा रहे हो, लेकिन ख्याल रखना, पुलिस की नौकरी में 1000 खैर ख्वाह होते हैं तो 1000 दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं, बहू का ख्याल रखना। पिता की हिदायतों के बावजूद बेखौफ चले आए हैं यशोवर्धन। दिशा के लिए घर से दूर नया शहर, नया स्टेट और नई नई ज्वाइनिंग, पिता की पुलिस, पति की पुलिस की नौकरी, जो स्वयं वर्दी तो पहनता है सबकी रखवाली के लिए, लेकिन जब उसकी रखवाली की बात आती है तब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ही भरोसा है, यह सब हर वक्त उसे आशंकित किए रहता। दूसरी तरफ उसे अपार खुशी भी है। पुलिस की वर्दी में पति की निखरती सुडोल देह यष्टि को देख रीस उठती है वह। ऑफिस जाने से पहले छोटे बच्चे की तरह पति को कान के पीछे काजल का टीका लगाकर विदा करती। अभी कुल 4 माह ही हुए हैं इस शहर में, बड़ी सी सरकारी कोठी भी मिल गई है रहने को, जिसे सजाने संवारने में लगी रहती है हर वक्त। अजनबी शहर बाहर भी कहीं नहीं जा पाती। ड्यूटी पर तैनात पति को इतना वक्त नहीं मिल पाता कि कहीं बाहर घूमने जा पाते। एक दो बार कांस्टेबल हरि सिंह की बीबी आई थी बाहर लिवा जाने के लिए, लेकिन वह नहीं जा पाई उसके साथ। पति के मातहतों के साथ ज्यादा मेलजोल बढ़ाना उसे रुचिकर नहीं लगा। दिन भर लोन में लगे पौधे और दुनिया के कोने कोने की खबर देता मोबाइल उसका साथ देने को पर्याप्त थे। सब अच्छा चल रहा था, दोनों खुश थे, लेकिन 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ है, घर आकर ऑफिस की बातें बताकर उसका मन बहलाने वाला पति चुप सा हो गया है। पत्नी की बाहों में जन्नत तलाशने वाला पति बाथरूम में अकेले वक्त बिताना चाहता है। हर वक्त खोया खोया सा, अनमनस्क सा रहता है। बस यही सब सोचते सोचते दिशा को नींद की झपकी आ गई। सुबह जब आंख खुली तो देखा भुवन भास्कर खिड़की से अंदर झांक रहे हैं। हड़बड़ाकर उठ बैठी वह और देखा पतिदेव वर्दी पहनकर तैयार खड़े हैं ऑफिस जाने के लिए। उई माँ, इतनी देर हो गई, आपने मुझे जगाया नहीं। कोई बात नहीं, तुम इतनी प्यारी नींद सो रही थी कि दिल न किया तुम्हारा ख्वाब तोड़ने का। इतना बोल यश ने पत्नी पर प्यार भरी निगाह डाली। दिशा झटपट बिस्तर से उठकर मुंह हाथ धोकर किचन की ओर दौड़ पड़ी। जैसे भी हो,

0: नाश्ता तो बना ही डालेगी, वरना कहीं भूखे ही न निकल जाए पतिदेव। यही सोच फटाफट हाथ चलाने लगी। जब तक चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई तो देखा आंखें बंद किए चिंतन मनन में तल्लीन है पतिदेव। दिशा ने पास आकर होले से पति को सहलाया और हंसकर कहने लगी, आधी आधी रात को उठकर जनाब नहाएंगे तो दिन में ऐसे ही झपकिया लेंगे ना, जनाब जरा वक्त देखकर चला करें। यशोवर्धन हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए, पत्नी की किसी बात का उत्तर न देकर एक हाथ में नाश्ते की प्लेट और दूसरे में चाय की प्याली थाम ली। पति की हड़बड़ी देख दिशा फिर हंसने लगी और अपने दुपट्टे के छोर से माथे पर छलक आई श्वेत बिंदु पहुंचते हुए कहने लगी, आपकी घबराहट देखकर लग रहा है कोई चोरी पकड़ी गई। अरे साहब ऑफिसर आप हैं मैं नहीं, इतना कहकर वह फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। पत्नी की निश्चल हंसी से यश को सुकून महसूस हुआ। दिशा ने अपने हाथ से चम्मच भर पोहा पति के मुंह में खिलाया और प्यार से निहारने लगी अपने देवता को। झटपट नाश्ता कर चाय को हलक से नीचे उतार यशवर्धन घर से निकल पड़े। दूर तक निहारती रही दिशा पति को, फिर अंदर आकर सब कुछ समेट कर जब फुर्सत में बैठी तो सोचती रही पति के असहज क्रियाकलापों के बारे में। हमेशा हंसने बोलने बात बात पर ठहाके लगाने वाला उसका पति अचानक इतना चुप चुप क्यों रहने लगा है। बस दिन भर इसी उधेड़ बिन में लगी रही अनमनी सी दिशा, कुछ करने का मन न हुआ। शाम को जैसे ही बैल बजी उसने लपक कर दरवाजा खोला और पतिदेव को सामने पाकर हाथ थाम कर अंदर ले आई। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं बाहर, दिशा ने पति के गले में हाथ डालकर आंखों में आंखें डाल प्यार से पूछा। नहीं आज नहीं, तुम चाय बनाओ तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ, यही साथ बैठकर बातें करेंगे। इतना बोल बाथरूम में जा घुसे यशवर्धन। 10-15 मिनट बाद दिशा चाय बनाकर ले आई, लेकिन पति को तब तक भी बाहर न निकला जानकर उसने आवाज लगाई, क्या वहीं सोने लगे हुजूर? नहीं नहीं बस अभी निकलता हूँ। 5 मिनट बाद जब यश बाहर निकल कर आए तब दिशा ने देखा फिर नहा कर आए हैं जनाब। वह हैरान थी आखिर हुआ क्या है। आगे बढ़कर दिशा ने पति के माथे को छुआ और प्यार से बोले, कुछ भी न छुपाना मुझसे, सच सच बताओ हुआ क्या है, इतनी इतनी देर तक नल चलाकर किस लिए पानी व्यर्थ बहाया जा रहा है। पत्नी की आंखों में देखकर कुछ भी छुपा न पाए यशवर्धन और अब मानो जमा लावा फूट पड़ा। दिशा को अपने सीने से लगाकर लंबी सांस भरकर बोले, बैठो दिशु सब बताता हूँ, तुमसे कुछ भी न छुपा पाऊंगा। तुम जानना चाहती हो ना कि क्या हुआ? डार्लिंग एक फर्जी एनकाउंटर में निर्दोष का खून जो मेरे हाथों में लग गया है उसे धोने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिरी वक्त मुझे घूरती उसकी निर्दोष आंखों से पीछा छुड़ाने की निरर्थक कोशिश कर रहा हूँ। इतना बोलकर पत्नी के सीने में मुंह छुपाकर फपक कर रो पड़ा वह पुलिस ऑफिसर। पति की बात सुनकर बमुश्किल इतना ही बोल पाई दिशा, जब वह निर्दोष था तो एनकाउंटर किया ही क्यों, ऊपर से ऑर्डर था और ऑर्डर इज ऑर्डर। दिशा उसके सीने में बड़े बड़े लोगों के राज दफन थे जिन्हें वह कभी भी उगल सकता था, पर मैं उसकी बीबी का चेहरा नहीं भूल पा रहा जो शायद इसी महीने बच्चा पैदा करने वाली है। मैंने एक अजन्मे बच्चे से उसका बाप छीन लिया है। बोलो दिशु मैं क्या करूं, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। इतना सुनने के बाद खड़ी न रह पाई दिशा, पति को बाहों में थामे बिस्तर पर ढह गई और जो वर्दी उसका मान अभिमान थी वह आज पति की देह से लिपटी उसे असह्य हो उठी।
1: अभी आप सुन रहे थे साहित्य सुगंध कार्यक्रम में हिंदी कहानी रात बाकी है। कहानीकार थे स्नेहलता। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता सुनेंगे हमारा कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम चित्र संसार। श्रोताओं, ये कार्यक्रम किसी एक फिल्म की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होता है।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के 30 मिनट के इस खास कार्यक्रम चित्र संसार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं आपका रेडियो जॉकी चंद्र प्रकाश बेदी। श्रोताओं, साल 1969 में आई फिल्म आराधना ने रातों रात जो इतिहास रचा था, उसके बाद निर्देशक शक्ति सामंत, सुपरस्टार राजेश खन्ना, संगीतकार आरडी बर्मन और गायक किशोर कुमार की चौकड़ी एक जादू बन गई थी। इसी जादू को पर्दे पर दोबारा दोहराने के लिए साल 1970 में निर्माण हुआ फिल्म कटी पतंग का। शक्ति फिल्म्स की बैनर तले बनी इस फिल्म ने साबित कर दिया कि आराधना कोई सफलता एक तुक्का नहीं थी, बल्कि यह भारतीय सिनेमा का एक नए और सुनहरे दौर की शुरुआत थी। श्रोताओं, आनंद बख्शी के लिखे गीत और पंचम दा के संगीत से सजी इस सस्पेंस ड्रामा फिल्म का हर एक फ्रेम दर्शकों को बांधे रखता है। चलिए अपने आधे घंटे के इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं किशोर दा की उस मखमली आवाज से, जिसे राजेश खन्ना की आत्मा कहा जाता था। राजेश खन्ना अक्सर खुद कहते थे, मैं तो सिर्फ शरीर हूँ, मेरी असली आवाज तो किशोर दा है।

चित्र संसार में आप सुन रहे हैं फिल्म कटी पतंग के सदाबहार गीत। श्रोताओं, इस फिल्म का नाम कटी पतंग क्यों रखा गया, इसके पीछे कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावुक मोड़ छिपा है। नायिका जो है माधवी आशा पारेख, अपनी शादी के दिन घर से भाग जाती है। रास्ते में ट्रेन के सफर के दौरान उनकी मुलाकात अपनी बचपन की सहेली पूनम से होती है, जो अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल जा रही होती है। लेकिन तभी ट्रेन एक भयानक हादसे का शिकार हो जाती है और पूनम मारी जाती है। अपनी सहेली के बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए माधवी खुद को पूनम बताकर एक विधवा के रूप में उसके ससुराल पहुंच जाती है। एक जवान लड़की का अपने सारे सपने छोड़कर एक कटी पतंग की तरह उस दिशा में बह जाना जहां हवा उसे ले जाए, यही फिल्म की आत्मा है। इसी दर्द और मजबूरी को पर्दे पर उतारने के लिए आशा पारेख जी को पूरी फिल्म में सफेद साड़ी पहननी पड़ी और इसी बेमिसाल अभिनय के लिए उन्हें उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

श्रोताओं क्या धुन है। इस गाने की धुन पंचम दा ने मूल रूप से एक बंगाली गीत घूम घूम तारा के लिए बनाई थी, जिसे बाद में हिंदी में पिरोया गया। अब बात करते हैं इस फिल्म के महान गीतकार आनंद बख्शी साहब की। बख्शी साहब की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो आम बोलचाल के शब्दों को सीधा दिल पर वार करते थे। जब शक्ति सामंत ने बख्शी साहब को सिचुएशन बताई कि फिल्म का हीरो अपने टूटे हुए प्यार को याद कर रहा है, लेकिन वो रो नहीं रहा है, बल्कि वो दुनिया की रीत पर एक प्यारा सा तंज कस रहा है एक शराबी के अंदाज में, तब बख्शी साहब ने अपनी कलम उठाई और कुछ ही देर में लिख दिया एक प्यारा सा गीत। और वो प्यारा सा गीत था ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम,

श्रोताओं, कटी पतंग सिर्फ रोमांस और त्याग की फिल्म नहीं थी, इसमें सस्पेंस भी भरपूर था। और जहां सस्पेंस था वहां अभिनेत्री बिंदु का नेगेटिव किरदार शबनम था, जो माधवी का राज जानती है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार रेप शैली का इस्तेमाल इसी फिल्म में हुआ था? जी हाँ, आज के दौर में जो रैप गाने हम सुनते हैं उसका बीज पंचम दा ने साल 1970 में ही बो दिया था। आशा भोसले जी की आवाज, बिंदु की अदाकारी और गाने के बीच में भारी सांसों की आवाज को संगीत की तरह इस्तेमाल करना, यह एक ऐसा प्रयोग था जिसने सबको चौंका ही दिया था।

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: उस रोज रात भर शनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना। मीना।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
5: इस छोटी सी ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं। चित्र संसार के इस आधे घंटे के सफर में वक्त कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा। आपके साथ हूं आपका रेडियो जॉकी चंद्रप्रकाश बेदी। श्रोताओं, अभी हमने कहानी के जिस मूड की बात की थी, जहां एक जवान लड़की अपने सारे अरमानों का गला घोटकर सफेद साड़ी पहन लेती है, उस परिस्थिति को संगीत में ढालना कोई आसान काम नहीं था। आनंद बख्शी साहब ने एक ऐसी नायिका के लिए गीत लिखा जिसने जीवन में अब कोई रंग बाकी ही नहीं था। और जब इन शब्दों को स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की मर्म स्पर्शी आवाज मिली तो सुनने वालों की आंखें नम हो।

लता जी की इस आवाज ने सीधे दिल के तार छेड़ दिए। श्रोताओं, कटी पतंग एक ऐसी फिल्म है जिसमें भावनाओं की हर रंग मौजूद है। फिल्म की क्लाइमेक्स में एक बेहद शानदार होली का गीत भी है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और नायिका के बेरंग जीवन में वापस लौटते हुए रंगों का प्रतीक है। किशोरदा और लता जी की आवाज में सजे इस गीत के बिना कटी पतंग की बात अधूरी है।

चलते चलते आपको इसी रंग बिरंगे गीत के साथ छोड़ जाते हैं। चित्र संसार कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। अब अपने रेडियो साथी चंद्र प्रकाश बेदी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी चूरू। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्र संसार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का रिले किया जाएगा।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का। जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ और बहुत सारे, इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहां पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
0: अच्छा
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं वहाँ पे।
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचिन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जलोजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी और जसपाल मुनी जी।

0: पंडित ज्वाला प्रसाद जी और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
1: जी।
0: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफी चाहता हूँ। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
1: दर्जा
0: वर्चस्व रहा है दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
1: वाह।
0: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
1: अच्छा।
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी जी,
0: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए।
1: जी जी।
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गज़ल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर,
1: ये सफर इस तरह से चलता रहा। हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: जरूर।
1: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा, देखिए आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूँ
0: जी,
1: और वो है तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं।
0: जी जी जी,
1: है ना
0: जी। जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूँ ना
1: जी,
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है।
1: क्या
0: बात। पिताजी के साथ।
1: वाह।
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पे रियाज कर रहा हूँ।
1: वाह।
0: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान।
1: जी जी जी।
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के।
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह।
0: और ये जो थ्रेडिंग है
1: जी,
0: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा।
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
1: क्या बात है।
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मांसरी को वेणु भी बोलते हैं।
1: जी जी।
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जरोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों
1: जी,
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके सलीम सुलेमान जी से लेके विशाल शेखर जी से लेके सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया।
1: वाह।
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल।
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उस

0: में जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे, क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है, और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया, पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया, ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं
1: जी, जी,
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं, और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था, और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी, जी,
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी, जी,
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें, उन्होंने राग मालकोस बजाया था
1: जी,
0: मेरे भाई ने राग हंसोदनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है।
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ
1: जी, जी, जी। क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा
1: जरूर,
0: उनके बारे में भी

0: पर जी बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए
0: जी
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे, दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे, उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे।

0: तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप ज़रूर भेजिए। वहाँ से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
1: अच्छा, हाँ, तो इस तरह से
0: मुंबई आना हुआ
1: जसपाल मोनी।
0: हाँ, इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
1: जी,
0: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता
1: जी।
0: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
1: त्याग करना पड़ेगा,
0: त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
1: जी
0: उस चीज में मेरे लिए।
1: बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
0: बिल्कुल।
1: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
0: जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है।
1: जी,
0: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
1: जी जी,
0: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो।
1: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
0: जी जी जी,
1: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
0: जी,
1: जी
0: जी।
1: और
0: ऊंचाई एक पिक्चर आई थी ऊंचाई
1: जी जी, राजश्री प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे।
0: एक मिली पिक्चर आई थी
1: जी,
0: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
1: बाबा
0: मुन्ना भाई एमबीबीएस रिटर्न है,
1: क्या बात है,
0: दबंग 3 है, दृश्यम है,
1: ये तो बहुत लंबी फेरिस्त है,
0: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मनमर्जियां है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली एलएलबी,
1: वाह वाह,
0: बहुत सारी पिक्चर हैं
1: जी, बिल्कुल
0: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
1: हाँ,
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है
1: जी जी बिल्कुल।
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माय पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है, तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूँ
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूँ
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्त सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट
1: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं। और दिलचस्प बात ये है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: हम बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है
1: जी? पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह।
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते
1: थे, मेटल फ्लूट हो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह
1: सिल्वर।

0: मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है।
1: जी जी।
0: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू
1: डिफरेंट है, बिल्कुल।
0: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
1: ये भी बजाना होता है।
0: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
1: जी।
0: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं
1: जी,
0: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
1: जी।
0: सो ये

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी।

0: उसका ऐसा साउंड।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा,
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन है, उनके पास में गया था इटली में, वो एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वाज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज मेरे लिए एक मुझे दीजिए क्योंकि मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर था।
0: और ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू।
1: जी जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं।
1: हाँ, ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी,
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गाऊं।
1: जरूर, बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ हाँ,
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ,

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी कर लेता
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो गया।
1: सर एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी,
1: मैं बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने, तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा। सो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का।
0: बिल्कुल,
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय किए जिंदगी में।
0: क्या बात है।
1: सो अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक
0: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है। ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो

0: कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
1: कहाँ से लाए?
0: नॉर्मल जहाँ से मैं, ये तो मैंने खुद बनाई हुई है।
1: अच्छा अच्छा।
0: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स। उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
1: जी।
0: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे
1: जी जी।
0: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है
1: बिल्कुल,
0: इसका साउंड में सुना था
1: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से अडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इनटू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाल ही नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक इसका जो स्टाइल है

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ

0: वाह,
1: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
0: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है,
1: बहुत बजाया मैंने इसको
0: जी, जी।
1: म्यूजिक में मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
0: जी,
1: एल्बम में

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी।
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या
0: जी?
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर दे तो मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक
0: जी जी।
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह।
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी।
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले
0: जी जी।
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा। पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादा निसा आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूँ
0: जी।
1: सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है
0: जी जी।
1: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है तोड़ी, पर सिर्फ सारे गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।

0: 와.
1: ये भी सारे काम है
0: जज्बात आ गए
1: पर इसमें प्यार है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
0: जी,
1: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है। मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
0: जी जी,
1: वो नहीं होती है। तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा। तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
0: जी।
1: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
0: यस,
1: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
1: क्या बात है,
0: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती नहीं है
1: जी।
0: इस महफिल को यहाँ रोकते
1: आपका,
0: हुए
1: आपका और इस जगह का जादू ऐसा है जी, मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव ऐसा रहता है।
0: मैं समझ सकता
1: आपका भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
0: जी,
1: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रित किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने,
1: नहीं जाने।
0: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
1: तो मैं
0: गाने की फरमाइश कीजिए।
1: हीरो,
0: देखिए फरमाइश भी आ गई।
1: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
0: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
1: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ उनको शायद।
0: अच्छा। क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
1: कॉम्प्लीमेंट है।
0: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
1: जी,
0: और आपको भी हीरो कह दिया है।
1: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
0: जी
1: सो ये हीरो धुन
0: जी
1: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
0: शुक्रिया,
1: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को।
0: बिल्कुल।
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है, ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हूँ, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। He was recording वन सॉन्ग सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वाले के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है, इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसे सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप।
1: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर

0: शानदार, क्या बात।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस, जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन
0: जी,
1: सिंगर
0: जी,
1: गा जाते हैं,
0: जी, जी।
1: ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
0: अच्छा अच्छा,
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है
0: जी।
1: अब जैसे एक वो है कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके,
1: तो ये एक थीम है। और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का
0: गाने, बहुत शानदार पीस।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई के।

क्षेत्र से। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। आइए कार्यक्रम विवरण में अब जानते हैं हमारी केंद्र से प्रसारित शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में।

अब से थोड़ी ही देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे दिन की 12 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन पाएंगे दिन की 12:30 पर। कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे अल्लाह जिल्ला बाई को। आकाशवाणी जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे दिन में 1 बजे। ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम घर आंगन सुनेंगी दिन में 1:05 पर। आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज का समय रहेगा दोपहर 2 बजे का। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से ही दोपहर समाचार। फिल्म संगीत पर आधारित तराने नए पुराने आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर। ये सभी कार्यक्रम थे प्रथम सभा के शेष रहे। आइए अब जानकारी लेते हैं सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में।

हमारी आज की सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ। शाम 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा शाम 6:05 का। आकाशवाणी दिल्ली से रिलीज संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। शाम 6:30 पर आप और हम चलेंगे आकाशवाणी जयपुर, जहां से पहले 6:30 पर होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 6:45 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से ही होगा शाम 6:40 पर। कार्यक्रम खेती और गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक जारी होगा रात्रि 8:45 पर। न्यूज़ @9 का समय रहेगा रात्रि 9 बजे का।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। आकाशवाणी दिल्ली से रिले चर्चा का विषय है, आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 10:30 पर। सभा के अंत में हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 11:00। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे रात्रि 11:05 पर। कार्यक्रम विवरण में अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारी केंद्र से प्रसारित शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में।

के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं केके की आवाज में, तुम मिले फिल्म से। इस गीत को शब्द दिए हैं सैयद कादरी ने और संगीत प्रीतम का है।

0: श्रेया घोषाल और शान की आवाजों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म तुमसा नहीं देखा में। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

श्रोता आप अपने रेडियो सेट पे सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनजाना अनजानी फिल्म से विशाल शेखर के संगीतबद्ध गीत को अमिताभ भट्टाचार्य और अन्विता दत्त के शब्दों में। इस गीत में आवाजें थी शेखर रावजियानी और कारा लिसा की।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मनोज यादव की शब्द रचना को विशाल मिश्रा के संगीत में। आवाज है अरिजीत सिंह की, फिल्म तू तक तू तक तू दिया।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत। आवाजें थी केके और जयेश कांडे की। इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने और धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।

चित्रपट संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं देवनागी और दीपाली की आवाजें। फिल्म है अंकुर अरोरा मर्डर केस। इस गीत को लिखा है कौशल मुनीर ने और धुन बनाई है चिरतन भाट ने।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।

0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे द्वारा लिखित और बान चक्रवर्ती द्वारा संगीतबद्ध गीत को। आवाजें थी विशाल ददलानी और सुनिधि चौहान की। फिल्म का नाम विकी डोनर।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं मनोज मुंतशिर की शब्द रचना को अभिजीत के संगीत में। आवाज है शेखर रावजियानी की और फिल्म का नाम अकीरा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे वजह तुम हो फिल्म से अरमान मलिक और तुलसी कुमार को। इस गीत को लिखा था कुमार ने और संगीत मीत ब्रदर्स का था।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे पापोन और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म थी बॉबी जासूस। इस गीत को लिखा था स्वानंद किरकिरे ने और धुन बनाई थी शांतनु मोइत्रा ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत पर आधारित चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
0: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए श्रोताओं, जैसा

0: से जुड़ी रोचक बातों को आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
1: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
0: जी।
1: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का

0: या और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
1: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ, जरूर।
1: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी

0: जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोबी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ

0: लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी,
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधि

0: गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिनखोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये दो तारों

0: वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओं

0: मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
8: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
9: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
9: तो रीच की आवाज है।
7: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है।
8: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
7: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया। और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
7: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
7: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
7: ये रीच तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
7: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
3: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
3: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
7: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
1: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी।

बाल कलाकार सोहम अरवानिया, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो? अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
6: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
8: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
6: बड़ी आई रोकने वाली।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं की रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
9: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
10: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
9: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
11: लेकिन मेरा आदमी तो भी काम ही पे नहीं जाता।
9: आप तो काम करती है ना?
11: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
9: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी

0: महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा, गौरमा,
3: क्या बात है चंपा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो यही बात है बहनों?
4: हाँ गौरमा,
5: हाँ गौरमा।
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
6: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ गौरमा,
5: हाँ,
4: सब
5: तैयार
4: हैं।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
3: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
8: अरे क्या कर रहे हो?
9: भूख के ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
8: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर चिपक जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: सुनो, आगे बढ़ो।
8: अरे कहां से
9: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए।
3: कर तो दिखाओ, तुम एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आज
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
8: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
9: आगे बढ़ो।
8: अरे कहाँ से?
9: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
8: आगे पेड़ों से चिपक जाएंगे।
3: तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: सुनो, आगे बढ़ो।
8: अरे कहां से?
9: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
8: आगे पेड़ों से चिपक जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ, तुम एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आज
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
8: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
9: तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो,
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये

0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों में काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहां के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बावला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: इसको सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम में आज आपने सुनी थी अल्लाह जिलाबाई की आवाज को। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आज एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग से 21 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर 10 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाते हुए दमकल कर्मियों के भी झुलसने के समाचार हैं। ताजा जानकारी मिलने तक लगभग 40 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के टिहरी इलाके में कल एक हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। ये दुर्घटना एक निजी वाहन के बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिर जाने से हुई। कार में सवार शेष 4 लोग लापता हैं। इनकी तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी लोग जैसलमेर जिले के

0: दरियानाथ बावड़ी के रहने वाले थे और हरिद्वार की ओर जा रहे थे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास के लिए आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इसे आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की कि अभी भी कुछ जनजातीय वर्गों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है और तलब है कि यह सम्मेलन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान देश भर में जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल को नियमित आदत बनाने से संतुलित और अनुशासित जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है, साथ ही पर्यावरण स्थिरता और स्वच्छ परिवहन को भी समर्थन मिलता है। इस बीच विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैलियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई साइकिल रैली विश्व प्रसिद्ध शांति पार्क में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान पौधे रोपकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। देश की पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में होने जा रही है। ये चैंपियनशिप 8 जून तक आयोजित की जाएगी। इसमें अमेरिका से भी योगा एथलीट का दल शामिल होगा। अमेरिकी योगा एसोसिएशन और USISF के संस्थापक और अध्यक्ष बलविंदर सिंह 11 सदस्यीय अमेरिकी दल का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जनअभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में विशेष नवाचार और अभिनव कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1:05 में है। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम घर आंगण लेर हाजिर हूँ मैं इंदु। तो घणो कार्यक्रम के मैं घणा मानशु मोकलो मोकलो स्वागत है थारो और करा मोकला मोकला राम राम। आपने ई कार्यक्रम के दौरान भेणो आप अपने घर परिवार की बात करा, एक अलावा कोई विशेष दिन हो भी के बारे में बात करा, तो आप बात तो मोकली सारी करी शुरुआत के माइन करवाते हैं एक बार थारो मनोरंजन।

लोकगीत के बाद में फिर स्वागत है भेणो कार्यक्रम के मायने। और अब आप बात करा के ओ गर्मी को मौसम चल रो है, तो ई मौसम के मायने आप अपने खान पान पर ध्यान देवा और गर्मी से खास कर अपने आप को बचाव करा। भेणो घर से बाहर जब निकला आप तो आपने शरीर ने अच्छी तरह से ढक कर के और हल्का आरामदायक कपड़ा पहना। धूप में जाते समय आप छाते को प्रयोग भी कर सका। हाँ, और अपनी आँखें ने धूप से बचाने के लिए धूप को चश्मों भी लगा सका। हाँ, थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर भेणो शीतल पेय पदार्थ आप लेता रहवा। जी, जल, ठंडो पानी, नींबू पानी, शिकंजी या नारियल पानी ए पीता रहवा। और आप सूर्य की जकी सीधी रोशनी अपने आ रही है तो भी के लिए आप अपने घर के मायने पर्दा को उपयोग कर सका। हाँ, अपने धन पशु है बिना भी छायादार स्थान के ऊपर बांधा। और बच्चा बुजुर्ग ने विशेष करके आप ई धूप के मायने बचा करके रखा, क्योंकि आ 10-11 बजे के बाद की गर्म हवा है आ इकी चपेट में अगर आ जावा तो आप बीमार पड़ सका। हाँ, और अत्यधिक गर्मी 12 बजे से 4 बजे तक हो है, तो भेणो ई टेम के मायने आप बाहर निकलने से बचने की कोशिश करा। अगर आपने बहुत जरूरी काम हो है तो ही आप बाहर जावा। और बच्चा है वह अभी बाकी छुट्टियां को टेम चाल रहे है, तो भेणो नंगे पैर बिल्कुल भी वाने नहीं घूमन देवा। और अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन या वाने बना करके देवा। और रात को जो बासी भोजन है भी को सेवन नहीं करन देवा। धूप के महीने खड़ी जिकी गाड़ी होवे या बारे कोई भी आपने साधन खड़े करेड़ो होवे तो वो गर्म हो जावे भी अंदर भी आप धूप के मायने बच्चा ने नहीं जान देवा। तो कहने को मतलब वही है कि भेनो ई तेज गर्मी से आपने अपना अपने बचा के रख सा, जदि आप ई गर्मी के मौसम की बीमारियां से अपनों बचाव कर सका। हाँ, इक अलावा भेनो ई गर्मी के मौसम के मायने आपने छाछ को सेवन ज्यादा से ज्यादा करा ताकि अपनी भूख बढ़े। और छाछ को सेवन आप कराई हाँ भेनो कि आपने भोजन के मायने तो छाछ या दही शामिल कराई हाँ, लेकिन ई मौसम के मायने ज्यादा सेवन करा। आपनी जिकी पाचन शक्ति है बात तीव्र होवे, जिकी शु आपने भूख लागने की जिकी समस्या है।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: मैडम फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। अब आप बात करा कि वो गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के खान पान की ही आप बात कर रहे हैं। ये मौसम के महीने आपने कम मसाला को उपयोग करना चाहिए। गर्मी के महीने ज़्यादातर गर्म तासीर का जगह मसाला है, वह आपने स्वास्थ्य ही दृष्टियों फायदे कौन करे आपने, तो आपने आए मसालाओं को कम उपयोग करना चाहिए। और ई मौसम के महीने आपा जिया जीरो, धनियो, सौंफ, इलायची जिसी ठंडी तासीर का जगह मसाला है वन प्राथमिकता देवा। आंको उपयोग करने से आपनों जो पाचन तंत्र है वो अच्छो बने और शरीर को जो तापमान है बिना संतुलित रखने को काम भी करे है। इके अलावा भेनों आपने गैस जिसी समस्या को नहीं होवे और कई बार आपा भोजन कर लेवा बीके बाद में आपने लागे के भोजन पच रहे को नहीं, तो बस समस्या भी आपने को नहीं होवे। ई गर्मी के मौसम के महीने ज़्यादातर आपा लौंग, दालचीनी, जायफल, सूखी लाल मिर्च आंको कम उपयोग करा। ए आपने शरीर की गर्मी ने बढ़ावे, जिससे आपने देखा के मुंह पर कई बार मुहासा हो जावे या पेट के महीने जलन की समस्या होवे। तो कहने को मतलब वही है कि बहनों ई मौसम के महीने गर्म मसाला जिका है बांको कम उपयोग करा। सौंफ अगर आपा भोजन करने के बाद में थोड़ी सी सौंफ चबा ली तो भी से आपने पेट की जलन शांत होवे। जीरो भी आपने पाचन में सुधार करे, शरीर ने ठंडक प्रदान करे, तो जीरे को उपयोग भी आपा कई तरीके से कर सका हाँ। सब्जी में तो आपा करा ही हाँ, इसके अलावा रायते में भी जीरे को उपयोग कर सका हाँ। और छाछ के साग भी अभी आपा बात करी तो जीरे को उपयोग है जो छाछ के साग भी आपा कर सका। धनियों है वो भी आपने पेट की गर्मी ने शांत करे है, तो वो भी मसाला के मायने उत्तम मान्यो गयो है, इको उपयोग आपा कर सका हाँ। शरीर की सूजन और जलन ने कम करे है। हरी इलायची इकी तासीर भी ठंडी होवे, आपने गैस से बचावे, तो इको भी उपयोग गर्मी के मायने आपने करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात को ध्यान रखा बहनो के आपा भोजन है जिको गर्मी के हिसाब से आपने हल्को होना चाहिए। आपा ताजा बना करके ही खावा और ये गर्मी के मौसम में एक सागे भरपेट भोजन आपा नहीं करा, समय के अंतराल से थोड़ी देर बाद में आपा फिर खा सका हाँ। और गर्मी के महीने पुदीने की चटनी है वह भी आपने लिए फायदेमंद हुए है। और नींबू तो आपा हर मौसम के महीने आपने घर में रखा, लेकिन नींबू को उपयोग भी ये गर्मी के मौसम के महीने आपने लिए ज़्यादा फायदों करे है। पुदीने की चटनी या नींबू पानी अगर आप पियो है तो भी सकी है कि आपने तुरंत यहाँ लगे कि अपने शरीर के माइन ठंडक सी महसूस होए। तो कहने को मतलब वही है कि बहनों ये मौसम का जगह ठंडा फल है बाको भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करा और गर्म मसाला से आप थोड़ा बचने की कोशिश करा। बहनों बातचीत तो आप और भी कर सें, एक बार फिर करा दें थारो मनोरंजन।

सका हाँ, ककड़ी खाने से वजन भी कम कर सका हाँ, और बहुत मात्रा में कैलोरी एक अंदर पाई जावे। तो बहनों, आपा सलाद के रूप में या सुबह खाली पेट अगर खाई है तो भी के बाद में आपा ने कई देर तक भूख कौन लागे। कहने को मतलब है कि आपा भी के बाद में खानो है जिको लेट तक खा सका। तो बहनों, जरूर आपा ने ये मौसम के मायने ककड़ी और खीरे को उपयोग करके आपने स्वास्थ्य ने बढ़िया बनानो है। बहनों, बातचीत तो आपा और भी कर सा, एक बार फिर करा दें मनोरंजन।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: मैडम फिर स्वागत है कार्यक्रम।

जो आपने तन और मन के बीच में संतुलन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। योग करने से केवल आपने शारीरिक फायदों ही कुन मिले भी के सागे सागे बहनों आपने शरीर के मायने स्फूर्ति भी आवे। और योग अगर आप कर रहे हैं और आपने शरीर के लिए कौन कौन सा योग आप कर रहे हैं और आपने कौन सा स्वास्थ्य लाभ लेना है भी के सही तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो बहनों आपने मानसिक शांति भी मिले, आपने शरीर ने ऊर्जा भी मिले। और आज के ई टीम के माइन बहनों कितनी कितनी बीमारियां का आप नाम सुना हाँ वह बीमारियां से भी आपनों बचाव हुए। तो जरूरी है कि आपनी जी की नियमित दिनचर्या है भी के मायने आप आधा घंटा को टाइम हो सके तो जरूर आप योग के लिए भी निकाला। इससे आपने बहुत सारा फायदा

आपने भाई या बहना में देखने में मिले। तो अगर आप सुबह को आधा घंटा को टाइम अगर योग ने दियो है, यानी योग आपने दिनचर्या में शामिल करो है, तो अपने मानसिक तनाव भी कम करा, आपने मन में कई तरह की जिकी चिंता है बासों भी अपने राहत मिले। क्योंकि सुबह जब उठा और सुबह ठंड को माहौल हो गए भी टाइम अगर आप योग कर रहे हो करियो है, तो बहनों कहने को मतलब है पूरे दिन आप ऊर्जावान रहा।

शारीरिक मजबूती और लचीलोपन भी आवे। बहनो आज के एटीएम के मैंने देखा आपनो जो को शरीर को मोटापो है वो बढ़ जावे और भी से आप अच्छे तरीके से उठने बैठने में भी दुख पावा। तो कहने को मतलब

करके योग अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करा। आपने ई मौसम का मैं देखा कि पाचन की समस्या भी आपने लग है कि आपने भोजन है जो सही पच रहे को नहीं, तो पाचन जो तंत्र है भी ने भी अच्छो बनावे। और बहनों सुबह आप जब योग अपनी दिनचर्या में शामिल करियो है तो पूरे दिन आप ऊर्जावान बनेड़ा रहे, हाँ कोई भी काम करियो है भी में भी आपनों मन लाग्यो है तो रात ने की जिकी नींद है वह भी आपने बहुत बढ़िया आवे। और योग और प्राणायाम को जो अभ्यास है वो आपने पाचन तंत्र ने मजबूत करे और नींद नहीं आने जिसी समस्या से भी आपने छुटकारो दिलावे और गहरी नींद लाने में भी मदद करे। फिर रात ने की जिकी गहरी नींद आवे तो जब आप सुबह उठा तो आपनों मन है जो बहुत शांत रहे, यानी आप सुबह अच्छी नींद ले करके अच्छो फील करा। एक अलावा भेनों आपनों मुख्य लक्ष्य वह है कि आपने शरीर को वजन कम करना है या तनाव कम करना।

मैं आपा शामिल करा, क्योंकि बुजुर्गों ने भी देखा बहनों के बहुत सारी बुढ़ापे के माइन बीमारियां हैं जिकी लाग जावे, और देखा के भाई कई तरह की दवाइयां वगैरह भी वहां की चल रही है। और भी के दौरान आपा योग अगर बन कराने की आदत डाली है तो बहनों सुबह सुबह योग करने से बहुत सारी बीमारियां हैं जिके हमें फायदो मिले, यानी मैं दोबारा जब चेक करावा तो योग की प्रक्रिया हूँ बहुत सारी बीमारियां ना आपा दूर कर सका। हाँ, और बच्चा है जगह अगर हंसी खेल के मायने आपने बड़े बुजुर्गों के सागे रवे या बने योग करवावे तो बने भी देखो बचपन से ही आपके शरीर ने योग या प्राणायाम करने की आदत पड़ जावे। और बांको शरीर है जिसको बचपन से ही अगर वह योग की आदत ने डाल ली तो बहनों आगे भी आपके जो स्वास्थ्य है भी ना बहुत अच्छो रख सके हैं। तो बहनों कहने को मतलब वही है कि अपनी दिनचर्या के मायने आपा योग ने जरूर शामिल करा। बातचीत तो बहनों और भी कर सा एक बार फिर करा दें थारो मनोरंजन।

हड्डी को दर्द है, रीढ़ की हड्डी ने मजबूत कर सका हाँ, और आपने कमर में जो को दर्द है, बिसे आपने राहत मिले। इके अलावा भेणो

थायराइड जिसी बीमारी ने भी आपा नियंत्रित कर सका हाँ। बी के लिए आपने सिंहासन, सुरंगासन और भुजंगासन करनो जरूरी है। ए के लिए अच्छा आसन है। और इके अलावा भेनो आपने हारमोल जिका संतुलन है बी ने भी अच्छो करे। इके अलावा भेनो आपा देखा के आपने कोई भी बीमारी है और बी के मायन आपा बी की सागर दवाई भी ले रहा हाँ, लेकिन अगर योग ने शामिल करो है तो आपा काफ़ी दिन तक लगातार करने के बाद में अगर दोबारा शरीर की जांच करवावा तो हो सके कई जी की बीमारियां हैं वन आपा दूर कर सका। और बहनों आपने एक आपा सुबह नियमित रूप से करो, अगर बीच में 10 दिन भी आपा नहीं करो तो वह आपने लिए फायदेमंद कौन रहे। सुबह आपने उठने को टाइम निर्धारित करके आपने हमेशा ये योग की जिसकी दिनचर्या के मायने शामिल करने की आदत आपा डाला। अगर आपा सुबह जल्दी 4 बजे उठ गया तो आपने घर को कामकाज करके और आधा घंटा या 15 मिनट को टाइम है जिसको आपा जरूर निकाला। बहनों अब घड़ी इशारों कर रही है कि आपनों जिसको कार्यक्रम को टाइम है वो पूरा होने में है, तो इंदु ने फिर मिलन ताने देव सीख करा राम राम।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 2 बजे मिड डे न्यूज। 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
0: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62%

0: SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोय ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

तराने नए पुराने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आगाज किया था मुकेश की आवाज के साथ। फिल्म थी सफर। इस गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। तराने नए पुराने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर को छलिया फिल्म में। इसमें गीतकार कमर जलालाबादी और संगीतकार कल्याण

0: मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाजों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में। इस गीत को लिया गया था जान फिल्म से। इसमें शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीतकार आनंद मिलिंद।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में। इस कार्यक्रम को अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से FM के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

लता मंगेशकर मुकेश और साथियों को अभी आप सुन रहे थे मिलन फिल्म में। इसमें गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में प्रस्तुत है राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में। आवाज है लता मंगेशकर की फिल्म इंतकाम।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने का अंतिम गीत आप सुन रहे थे इश्क विश्क फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का अपना कार्यक्रम जुड़ पानी है।

जी दोस्तों, गाने के साथ हो चुकी है कार्यक्रम युवाणी की शुरुआत। और आज की इस युवाणी में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी डिंपल शर्मा। प्रोग्राम सुन रहे तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

जी दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी लेकर हाजिर हो चुके हैं हम। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज है बुधवार और बुधवार को रहता है हमारा खास सेगमेंट विज्ञान धारा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा जो खास सेगमेंट है जहां हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रोचक दुनिया से जुड़ी ऐसी बातें लेकर आते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को आसान, सुरक्षित और बेहतर बनाती है। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान जो है वो केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मोबाइल फोन से लेकर रसोई घर तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक विज्ञान जो है वो हर जगह मौजूद है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में क्या बदलाव लाए हैं और भविष्य में हमें क्या नई जो संभावनाएं हैं वो देखने को मिल सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दशक पहले लोगों के पास ना स्मार्टफोन थे, ना इंटरनेट और ना ही वीडियो कॉल की जो सुविधा है वो उपलब्ध थी। यदि किसी दूर बैठे रिश्तेदार से हमें बात करनी होती तो चिट्ठी जो है उसका सहारा लेना पड़ता था। लेकिन आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बदौलत दुनिया जो है वो हमारी हथेली में समा गई है। एक छोटा सा स्मार्टफोन हमें पूरी दुनिया से जोड़ देता है। हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और अपने प्रियजनों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। यही जो है वो विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है, समस्याओं का समाधान। विज्ञान हमें प्रश्न पूछना सिखाता है और प्रौद्योगिकी जो है वो उन प्रश्नों के उत्तर को व्यवहारिक रूप दे देती है। आइए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी दोस्तों, आजकल जो ये शब्द है वो हम अक्सर सुनते हैं, और लेकिन अगर इसकी बात करें कि ये वास्तव में है क्या, तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सीखने, सोचने और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो प्रदान करती है। आज मोबाइल के वॉइस असिस्टेंट, ऑनलाइन जो भी हम बातें करते हैं या वीडियो कॉल, चेहरे की पहचान और कई जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इसी टेक्निक पर पूरी तरीके से बेस्ड है। और ये जो टेक्निक है वो किसानों को मौसम की जानकारी देने, डॉक्टरों को बीमारी पहचानने और छात्रों को पढ़ाई में सहायता करने में भी मदद करती है। और ये जो विज्ञान है वो अंतरिक्ष में भी पीछे नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम बात करें अंतरिक्ष विज्ञान की तो जब भी हम रात के अंदर उठते हैं तो आकाश में तारों को देखते हैं। तारों को देख के मन में अनेक प्रश्न जो है वो उठते हैं, आखिर अंतरिक्ष कितना विशाल है, दूसरे ग्रहों पर जीवन है या नहीं, ये जो सवाल है वो अक्सर हमारे मन में आते हैं। और इन सवालों के जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। भारत की अंतरिक्ष जो संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी अनेक महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं वो हासिल की है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। और इन अभियानों से केवल वैज्ञानिक जानकारी ही नहीं मिलती है दोस्तों, बल्कि नई तकनीकों का विकास भी होता है जिनका उपयोग बाद में आम लोगों के जीवन में किया जाता है। और विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ लगातार जो विज्ञान है वो तरक्की कर रहा है, वो है स्वास्थ्य विज्ञान। पहले जिन बीमारियों का इलाज मुश्किल माना जाता था, आज उनके उपचार संभव हो चुके हैं। नई दवाइयाँ, आधुनिक मशीनें और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं जो है चिकित्सा क्षेत्र को लगातार बेहतर बना रही है। आज डॉक्टर दूर बैठे मरीजों की जाँच कर सकते हैं और आवश्यक सलाह दे सकते हैं। यही कारण है कि विज्ञान जो है

मानव जीवन की गुणवत्ता को लगातार बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और दोस्तों, अब अगर बात करें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी कितनी ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किया है। जैसे कि हम बात करें पर्यावरण और विज्ञान की, तो आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है, लेकिन विज्ञान जो है इसके समाधान भी खोज रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य जो ऊर्जा स्रोत हैं, वहां पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान जो है वो हमें मिल रहे हैं। आज घरों की छतों पर जो सोलर पैनल है, वो बिजली उत्पादन का एक सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन भी प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विज्ञान जो है वो केवल बड़े बड़े आविष्कारों तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास की जो छोटी छोटी चीजें हैं उन सभी में विज्ञान जो है वो छिपा हुआ है। जैसे हम रसोई घर की बात करें, तो कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, और बहुत से जो भी हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं, ध्यान से देखें तो किसी न किसी चीज में विज्ञान जो है वो छुपा हुआ है। और इन सभी सवालों के पीछे का काम जो है वो विज्ञान ही करता है। यही जो जिज्ञासा है वो वैज्ञानिक सोच की भी शुरुआत करती है। जब हम प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर खोजते हैं, तभी विज्ञान आगे बढ़ता है और हमें भी आगे बढ़ाता है। और दोस्तों, अगर हम भविष्य की बात करें, तो आने वाले वर्षों में रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष पर्यटन जैसे क्षेत्र जो है वो तेजी से विकसित होंगे। संभव है कि भविष्य में रोबोट कई कठिन कार्यों में हमारी सहायता करे। नई तकनीकें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग को और अधिक जो उन्नत है वो बना दें। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, ये भी आवश्यक है कि तकनीक का उपयोग जो है जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाए, ताकि उसका लाभ जो है वो पूरे समाज तक पहुंच पाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल मशीनों और उपकरणों की कहानी नहीं है दोस्तों, ये मानव जिज्ञासा, खोज और नवाचार की कहानी है। जब भी हम कोई नया प्रश्न पूछते हैं, कोई नई समस्या सुलझाने का प्रयास करते हैं या कुछ नया सीखते हैं, तब हम विज्ञान की भावनाओं को और भी ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, और भी ज्यादा आगे लेकर जाते हैं। और जितना ज्यादा हम प्रश्न पूछेंगे और जानने की जो इच्छा है वो रखेंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति रखेंगे, उतना ही ज्यादा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हमें जानने में मजा आएगा और हमें पता चलेगा कि विज्ञान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और हमारे लिए कितना कार्य कर रहा है, हमारा देश, हमारा समाज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जी दोस्तों, कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

विज्ञान किस तरीके से प्रगति कर रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उन सब पे हम बातें करते हैं। और दोस्तों, जितनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है तो उस गर्मी को देखकर हमें ये लगता है कि जो बादल है वो बरस जाने चाहिए, बारिश हो जानी चाहिए। और हमारे मन में भी बहुत से सवाल आते हैं कि क्या इंसान जो है बादलों को आदेश दे सकता है, क्या हम अपनी इच्छा से बारिश करा सकते हैं। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि आसमान में बादल तो हैं लेकिन वो बरस नहीं रहे हैं, खेत सूखे पड़े हैं, जलाशयों का पानी कम हो रहा है और लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तभी वैज्ञानिक आते हैं और कुछ विशेष पदार्थों को हवाई जहाज से बादलों में छोड़ते हैं। कुछ समय बाद वही बादल बरसने लगते हैं। सुनने में यह किसी विज्ञान की जो कहानी है या कोई फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये वास्तविक विज्ञान है दोस्तों, जिसे हम कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग कहते हैं। लेकिन क्या ये सचमुच काम करती है? बारिश कैसे बनती है? बादलों में ऐसा क्या किया जाता है कि वे बरस पड़ते हैं? तो ये जो सवाल है वो हम सभी के मन में आते हैं। और आज के इस खास सेगमेंट में हम कृत्रिम वर्षा की जो जानकारी है वो जानेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि बारिश जो है वो आखिर बनती कैसे है। कृत्रिम वर्षा को समझने से पहले हमें प्राकृतिक वर्षा को समझना होगा। सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदियों और झीलों और मिट्टी का जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठता है। ऊपर जाने पर तापमान कम होता है और ये जो भाप है वो छोटे छोटे जल कणों में बदल जाती है और इन्हीं जल के कणों से बादल बनते हैं। लेकिन केवल बादल बन जाने से ही बारिश नहीं होती है। बारिश तब होती है जब बादलों के अंदर मौजूद जो छोटे जलकण होते हैं वो आपस में मिलकर बड़े और भारी हो जाते हैं। जब उनका वजन इतना बढ़ जाता है कि वो हवा में नहीं टिक पाते हैं, तब वे पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं और ये जो प्रक्रिया है ये बारिश कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कृत्रिम वर्षा की, कि कृत्रिम वर्षा क्या है। तो अब ये जो सवाल है वो ये है कि यदि बादल मौजूद हों लेकिन वे बारिश न कर रहे हों तो क्या उनकी मदद की जा सकती है? और इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल इसकी उनकी मदद जो है वो हम कर सकते हैं। कृत्रिम वर्षा ये ऐसी तकनीक है जिसमें वैज्ञानिक जो है बादलों के अंदर कुछ विशेष पदार्थ डालते हैं ताकि जलकण जो है तेजी से एकत्रित होकर बड़े बन जाएं और वर्षा शुरू हो सके। और इस प्रक्रिया को ही हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। सीडिंग का अर्थ है बीज बोना। जिस प्रकार खेत में बीज बोकर फसल उगाई जाती है, उसी प्रकार जो है बादलों में विशेष कण छोड़कर वर्षा की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्लाउड सीडिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है। क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे पहले मौसम वैज्ञानिक ये जांचते हैं कि कौन से बादल वर्षा के लिए उपयुक्त हैं। यदि बादलों में पर्याप्त नमी मौजूद है तब उन पर काम किया जाता है और इसके बाद विशेष विमान, रॉकेट या जमीन पर लगे जो उपकरण हैं उनकी सहायता से कुछ पदार्थ बादलों में छोड़े जाते हैं। इन पदार्थों में मुख्य रूप से शामिल है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ। ये जो पदार्थ है वो बादलों के भीतर छोटे छोटे केंद्र बनाते हैं जिनके चारों ओर जलवाष्प जमा होने लगती है। धीरे धीरे जलकण बड़े और भारी हो जाते हैं और अंततः वर्षा जो है वो शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग क्यों किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल जो है वो ढांचा बर्फ के समान होता है। जब इसे बादलों में छोड़ा जाता है तो जलवाष्प इसके आसपास जमने लगती है, परिणाम स्वरूप बर्फ के छोटे कण बनने लगते हैं और ये कण बड़े हो जाते हैं और बाद में ये पिघल कर वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। इसी कारण सिल्वर आयोडाइड क्लाउड सीडिंग में सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। अब बात करें कि कृत्रिम वर्षा जो है वो क्या कहीं भी कराई जा सकती है। तो दोस्तों, इसको करवाने के लिए थोड़ी बातों का ध्यान जो है वो वैज्ञानिकों को रखना होता है, जो कि ये है कि सबसे बड़ी गलतफहमी हम ये मानते हैं कि किसी भी समय और किसी भी स्थान पर हम बारिश जो है वो करा सकते हैं। कृत्रिम वर्षा तभी संभव है जब आसमान में उपयुक्त बादल मौजूद हों, बादलों में पर्याप्त नमी हो, तापमान और हवा की स्थिति जो है वो अनुकूल हो। और यदि बादल ही नहीं है तो क्लाउड सीडिंग कोई चमत्कार नहीं कर सकती है। इसलिए वैज्ञानिक जो है बारिश की संभावना है उसको बढ़ा सकते हैं और बारिश करवा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि दुनिया में सबसे पहली कृत्रिम वर्षा जो है वो कब हुई, कहाँ हुई। दुनिया की पहली सफल कृत्रिम वर्षा जो है वो साल 1946 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी और इसे कराने वाले वैज्ञानिक का नाम विंसेंट शेफर था, जिन्होंने बादलों में सूखी बर्फ का छिड़काव करके ये जो प्रयोग है वो किया था। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ का पहला सफल जो कृत्रिम वर्षा है उसका प्रयोग 1952 में कोलकाता में हुआ था।
और जो कृत्रिम वर्षा है वो करवाई गई थी। और दोस्तों अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ मानसून का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब कभी वर्षा कम होती है या सूखे की स्थिति बनती है तब क्लाउड सीडिंग पर विचार किया जाता है। और भारत में कई राज्य भी हैं जिनमें समय समय पर कृत्रिम वर्षा के प्रयोग किए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो प्रमुख है। और इन प्रयोगों का उद्देश्य जल संकट को कम करना, किसानों को राहत जो है वो पहुंचाना है। अब बात करें कृत्रिम वर्षा के लाभ के बारे में, तो सूखे से राहत मिलती है। जब प्राकृतिक वर्षा कम हो तब जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है, कृषि को सहायता मिलती है, जलाशयों का भराव होता है, बांधों और झीलों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, फसलों को आवश्यक पानी मिल सकता है और कुछ देशों में जंगलों की आग कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार वर्षा से वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषण जो कण है, प्रदूषक के कण, वो नीचे बैठ जाते हैं, तो वायु प्रदूषण में कमी में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हमने जाना कि कृत्रिम वर्षा जो है वो किस तरीके से करवाई जाती है। ये कोई जादू नहीं है बल्कि विज्ञान का अद्भुत प्रयोग है। ये तकनीक बादलों को पैदा नहीं करती बल्कि पहले से मौजूद बादलों में वर्षा की संभावना बढ़ाने का प्रयास करती है। और यह हमें भी सिखाती है कि विज्ञान प्रकृति को नियंत्रित करने की नहीं बल्कि उसे समझने और उसके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान खोजने की कला है। जब भी अगली बार आप आसमान में बादल देखें और बारिश की बूंदें महसूस करें तो याद रखिए कि पानी की हर बूंद के पीछे प्रकृति का अद्भुत विज्ञान काम करता है। और कभी कभी उस विज्ञान की मदद करने के लिए इंसान भी अपनी बुद्धि और तकनीक का उपयोग करता है। और किस तरीके से जो है वो प्रकृति के साथ मिलकर और विज्ञान के साथ मिलकर हम जो है बहुत सी चीजों को आसान और सफल बना सकते हैं। जी दोस्तों, खास सेगमेंट में बातें यूं ही जारी है। फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: ये आकाशवाणी का प्रसारण है आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू
4: जी दोस्तों खास सेगमेंट विज्ञान धारा में आज हम आपको अंतरिक्ष की एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया में ले चलेंगे जहां एक ऐसा तूफान उठता है जो समुद्रों में नहीं धरती के आसमान में नहीं बल्कि करोड़ों किलोमीटर दूर जो है वो हमारे सूर्य पर पैदा होता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, जीपीएस जो है वो बंद हो चुका है।

सैटेलाइट से संपर्क टूट गया है और दुनिया के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। कोई भूकंप नहीं आया, कोई चक्रवात नहीं आया, फिर ऐसा क्या हुआ? और इसका कारण हो सकता है दोस्तों सौर तूफान, यानी कि सोलर स्टॉर्म जो है वो इसका कारण हो सकते हैं। क्या सूरज में भी तूफान आते हैं? ये किस तरीके से बनते हैं? क्या ये पृथ्वी के लिए खतरनाक है? और वैज्ञानिक जो है इन पर नजर कैसे रखते हैं? अगर ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो इनके जवाब जो है वो आपको हमारे खास सेगमेंट विज्ञान धारा में मिलेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, सूरज के तूफान का जो अद्भुत विज्ञान है उसके बारे में हम जानते हैं कि हम हर दिन जो है सूर्योदय देखते हैं, हमें लगता है कि सूर्य जो है वो एक शांत चमकता हुआ गोला है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक रोमांचक है। सूर्य एक विशाल उबलता हुआ गैस का गोला है जिसका तापमान उसके केंद्र में लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। सूर्य के भीतर लगातार परमाणु संलयन जो है उसकी प्रक्रिया चलती रहती है और इसी प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। लेकिन सूर्य जो है उसकी सतह हमेशा शांत नहीं रहती है, वहां कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली जो विस्फोट हैं वो होते हैं जिन्हें हम सौर तूफान कहते हैं। अब बात करें दोस्तों कि वास्तव में सौर तूफान क्या है, तो सन स्टॉर्म जो है वो सौर तूफान की अगर हम बात करें तो वो होने वाली सूर्य पे अत्यधिक ऊर्जावान गतिविधियों का समूह है, यानी कि सूर्य जो है उस पे बहुत सारी जो ऊर्जाएं हैं और जो बहुत ज्यादा अत्यधिक ऊर्जावान गतिविधियां होती रहती है उनका समूह है वो सौर तूफान कहलाता है। जब सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में अचानक परिवर्तन होता है तब बड़ी मात्रा में ऊर्जा और ज्यादा आवेशित कण अंतरिक्ष में फेंके जाते हैं और इसी घटना को सामान्य रूप से सौर तूफान कहा जाता है। ये तूफान हवा या पानी का नहीं होता बल्कि ऊर्जा विकिरण और आवेशित कणों का होता है। अब बात करें दोस्तों कि जो सौर तूफान है उसके मुख्य प्रकार क्या होते हैं, तो जो सोलर फ्लेयर है वो भी इसका प्रकार है। यह सूर्य की सतह पर होने वाला शक्तिशाली विस्फोट है, कुछ मिनटों में इतनी ऊर्जा निकल सकती है जितनी लाखों परमाणु बमों से उत्पन्न नहीं होती है। सोलर फ्लेयर से एक्सरे और अन्य विकिरण अंतरिक्ष में फैलते हैं। अब बात करें इसके दूसरे प्रकार के बारे में, तो कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CME, यह सौर तूफान का सबसे खतरनाक रूप माना जाता है। इसमें जो सूर्य है वो अपने बाहरी वातावरण यानी कोरोना से अरबों टन प्लाज्मा अंतरिक्ष में फेंक देता है और यदि वह प्लाज्मा पृथ्वी की ओर आए तो हमारे ग्रह पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। सौर कण तूफान इसका तीसरा तरीके का प्रकार है। इस पे अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें अत्यधिक तेज गति वाले जो प्रोटॉन हैं और अन्य कण हैं वो अंतरिक्ष में फैलते हैं और ये जो है अंतरिक्ष यात्रियों और उपग्रहों के लिए विशेष रूप से जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि सौर तूफान जो है वो क्यों बनते हैं। जो सूर्य है वो एक विशाल चुंबकीय मशीन की तरह काम करता है, उसके भीतर मौजूद गर्म जो गैसें हैं वो लगातार घूमती रहती है और इस गति के कारण सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र जो है बार बार मुड़ता उलझता और बदलता रहता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में बहुत अधिक तनाव जमा हो जाता है तब अचानक ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा सौर फ्लेयर कहलाती है, कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में दिखाई देती है। अब बात करते हैं सन स्पॉट के बारे में दोस्तों। यदि वैज्ञानिकों को सौर तूफान का अंदाजा लगाना हो तो वो सूर्य पर मौजूद जो काले धब्बे हैं उनको देखते हैं कि किस तरीके से वैज्ञानिक जो है वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें जो काले धब्बे उपस्थित होते हैं सूर्य पे इनको सन स्पॉट कहा जाता है। ये क्षेत्र आसपास की तुलना में थोड़े ठंडे होते हैं और यहाँ चुंबकीय गतिविधियां बहुत अधिक होती है। जितने अधिक सनस्पॉट दिखाई देते हैं सौर गतिविधियों की संभावना जो है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सूर्य का 11 वर्षीय चक्र क्या होता है। तो दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि सूर्य जो है वो हमेशा समान रूप से सक्रिय नहीं रहता, उसकी गतिविधियां लगभग 11 वर्षों के चक्र में बदलती रहती है। इस दौरान बहुत से परिवर्तन जो है वो सूर्य में होते हैं। कभी सूर्य बहुत शांत रहता है, कभी उस पर बड़ी संख्या में सनस्पॉट दिखाई देते हैं इसी समय, और जो सौर तूफान जो होते हैं वो उनकी संभावना सबसे अधिक होती है। जब ज्यादा सनस्पॉट दिखाई देते हैं तो सौर तूफान की संभावना बढ़ जाती है। इस अवधि को सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं सौर तूफान, किस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है वो इससे प्रभावित होती है। तो पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक जो विकिरणें हैं या हानिकारक जो कण हैं उनसे बचाता है, लेकिन जब बहुत शक्तिशाली सौर तूफान आते हैं तब वे इस सुरक्षा कवच को प्रभावित कर सकते हैं।
हमारी संचार प्रणाली पर भी इसका प्रभाव होता है। शोर तूफान जो है, बहुत से संकेत जो

है उनको बाधित कर सकते हैं। और बात करें जीपीएस पर भी प्रभाव इसका होता है। आज हम दिशा जानने के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं, लेकिन सौर तूफान पृथ्वी के ऊपरी जो वायुमंडल को प्रभावित कर जीपीएस संकेतों में त्रुटियां पैदा कर सकते हैं। उपग्रहों पर भी इसका प्रभाव होता है। पृथ्वी के चारों ओर हजारों उपग्रह घूम रहे होते हैं जो हमें मौसम, इंटरनेट, टीवी प्रसारण और संचार सेवाओं के लिए आवश्यक होते हैं और जानकारी देते हैं। तो सौर तूफानों से उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं, उनकी कक्षा में परिवर्तन हो सकता है और कुछ मामलों में वे अस्थायी रूप से बंद भी हो सकते हैं। साथ ही साथ बिजली ग्रिड पर भी प्रभाव होता है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि इंसानों को किस तरीके से ये नुकसान पहुंचा सकते हैं या इंसानों को नुकसान इससे होता है या नहीं, तो पृथ्वी की सतह पर रहने वाले अधिकांश लोग जो हैं सुरक्षित रहते हैं क्योंकि हमारा वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र सुरक्षा हमें प्रदान करता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री, ध्रुवीय क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले विमान, अंतरिक्ष में मौजूद उपकरण, इन पर प्रभाव अधिक पड़ता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑरोरा की, जो कि सौर तूफान का सुंदर रूप है। सौर तूफान हमेशा नुकसान ही नहीं पहुंचाते हैं, कभी कभी वे प्रकृति के सबसे सुंदर दृश्यों में से एक बन जाते हैं। जब सूर्य से आए आवेशित कण पृथ्वी के वातावरण से टकराते हैं तब आकाश में रंग बिरंगी रोशनी हमें दिखाई देती है, इसे ऑरोरा कहते हैं। अब हम बात करें उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में भी हम ये जो सौर तूफान है वो देख सकते हैं और इसको ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। ऑरोरा बोरियालिस को आम बोलचाल में उत्तरी रोशनी भी कहा जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्रों में रात के समय आसमान में दिखने वाली एक जादुई और रंगीन प्राकृतिक रोशनी होती है। ये हरी, गुलाबी, बैंगनी, लाल और नीली रोशनी के रूप में आसमान में लहरों की तरह चमकती है। और इसी के साथ साथ ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है, जिसे हम दक्षिणी रोशनी कहते हैं, ये एक प्राकृतिक रंगीन रोशनी की घटना है जो मुख्य रूप से पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, विशेष रूप से अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागरों में रात के आसमान में ये हमें दिखाई देती है। यानी प्रकृति का एक सुंदर रूप भी हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों वैज्ञानिक जो है सौर तूफानों की निगरानी किस तरीके से करते हैं, तो दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार सूर्य पर नजर रखती है, जैसे कि नासा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। विशेष जो अंतरिक्ष यान और दूरबीन सूर्य की गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है और इन आंकड़ों की सहायता से वैज्ञानिक जो है संभावित सौर तूफानों की चेतावनी जारी कर सकते हैं। और सूर्य को समझने के लिए भारत ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत का जो पहला समर्पित मिशन है, इसका उद्देश्य सूर्य की बाहरी परत, सौर हवाओं और चुंबकीय गतिविधियों का अध्ययन करना है। इससे वैज्ञानिक सौर तूफानों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। मानव सभ्यता जितनी अधिक तकनीक पर निर्भर होती जा रही है, सौर तूफानों का महत्व भी उतना बढ़ता जा रहा है। दोस्तों भविष्य में इंटरनेट नेटवर्क, सैटेलाइट संचार, अंतरिक्ष विमान, स्मार्ट बिजली ग्रिड, इन सभी को सौर गतिविधियों से सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती होगा। लेकिन अगर इस पर काम किया जाता है, वैज्ञानिक इस पर लगातार काम कर रहे हैं, तो आगे जो है इस पर नियंत्रण पाना संभव हो जाएगा। और दोस्तों आज हमने जाना कि हमारा सूर्य केवल प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत सक्रिय और गतिशील तारा भी है। उसकी सतह पर उठने वाले सौर तूफान करोड़ों किलोमीटर दूर पृथ्वी तक भी प्रभाव डालते हैं। सौर तूफान हमें सिखाते हैं कि अंतरिक्ष भले ही शांत दिखाई दे, लेकिन इसके भीतर शक्तिशाली घटनाएं लगातार घटित होती रहती है और विज्ञान जो है इन्हीं रहस्यों को समझने का प्रयास करता है ताकि हम भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रह सकें। अगली बार जब आप सुबह सूरज की ओर देखें तो याद रखिए उस चमकते हुए गोले के भीतर ऊर्जा का एक विशाल महासागर जो है वो है, और कभी कभी उसी महासागर से उठते हैं ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत तूफान सौर तूफान।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: जी दोस्तों, खास सेगमेंट विज्ञान धारा में बात करते हैं आज के खास दिन के बारे में। आज के दिन को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर वर्ष जो है 3 जून को हम ये मनाते हैं। और ये दिन केवल एक साधारण वाहन के महत्व को याद करने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। दोस्तों, जब हम साइकिल की बात करते हैं तो हमारे मन में बचपन की अनेक यादें जो हैं वो ताजा हो जाती है। किसी को पहली बार साइकिल चलाना सीखने का अनुभव याद आता है, तो किसी को दोस्तों के साथ गलियों में घूमना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दोपहिया वाहन जो है या साधारण सा साधन जो है वो दुनिया को बेहतर बनाने में कितना बड़ा योगदान दे सकता है? आज के इस विशेष जो हमारा खास सेगमेंट है उसमें हम जानेंगे कि साइकिल का इतिहास, उसका महत्व, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उसके सकारात्मक प्रभाव और आधुनिक जीवन में साइकिल की भूमिका क्यों पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साइकिल का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है और समय के साथ इसके अंदर बहुत ही बदलाव हुए हैं। शुरुआती साइकिलों में पैडल नहीं होते थे, लोग अपने पैरों की मदद से उन्हें आगे बढ़ाते थे। धीरे धीरे तकनीक विकसित हुई और आज की आधुनिक साइकिल जो है वो हमारे सामने है। साइकिल ने परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है और ये ऐसा साधन बना जिसमें लोगों को कम लागत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की सुविधा प्रदान की जाए। आज भी दुनिया के करोड़ों लोग रोजमर्रा की यात्रा के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मान्यता दी और इसका उद्देश्य लोगों को साइकिल के लाभों के बारे में जागरूक करना और इसे एक सुरक्षित, सस्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देना है। विश्व साइकिल दिवस हमें ये संदेश देता है दोस्तों कि छोटी छोटी आदतें भी समाज और पर्यावरण का जो बड़ा सकारात्मक प्रभाव है वो दिखा सकती है, बड़ा सकारात्मक प्रभाव उस पर डाल सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शारीरिक गतिविधियों के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसका परिणाम मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और तनाव जैसी समस्याओं के रूप में सामने आता है। ऐसे में साइकिल एक सरल और प्रभावी समाधान है दोस्तों। रोजाना साइकिल चलाने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हृदय स्वस्थ रहता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, वजन हमारा नियंत्रित रहता है, तनाव और चिंता कम होती है, शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति जो है वो बनी रहती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमित साइकिल चलाना एक उत्कृष्ट व्यायाम है जो लगभग हर आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। आज पूरी दुनिया प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है दोस्तों। साइकिल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाती है, ना पेट्रोल की आवश्यकता, ना डीजल और ना ही किसी प्रकार के धुएं का उत्सर्जन। यदि अधिक लोग छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें तो वायु प्रदूषण कम होगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा, ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण अधिक स्वच्छ रहेगा। इसलिए साइकिल को हरित परिवहन का सबसे अच्छा उदाहरण हम मान सकते हैं। आज ईंधन की बढ़ती कीमतें हर व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, ऐसे समय में साइकिल एक किफायती विकल्प है। साइकिल खरीदने और उसके रखरखाव की लागत जो है वो अन्य वाहनों की तुलना में भी बहुत कम होती है और इसके लिए ना ईंधन की जरूरत होती है दोस्तों, ना ही महंगे रखरखाव की। विशेष रूप से विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और दैनिक यात्रा करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए साइकिल एक उपयोगी और सस्ता साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनेक विद्यार्थी साइकिल की सहायता से विद्यालय पहुंचते हैं। कई राज्यों में विद्यार्थियों को साइकिल उपलब्ध कराने की योजनाएं चलाई गई है ताकि वे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें। साइकिल न केवल यात्रा को आसान बनाती है बल्कि शिक्षा तक पहुंच को भी मजबूत बनाने में सक्षम हो रही है। साइकिल केवल एक वाहन नहीं है दोस्तों, बल्कि स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। कई क्षेत्रों में साइकिल ने महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों तक पहुंचने में सहायता प्रदान की है। जब किसी लड़की को साइकिल मिलती है तो वह केवल दो पहियों का साधन नहीं बल्कि आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और नए अवसरों की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा

जाती है। साइकिलिंग की बात करें दोस्तों, तो साइकिलिंग जो है आज एक लोकप्रिय खेल भी बन चुका है। दुनिया भर में अनेक साइकिल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है और इन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी अपनी गति, सहन शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। साइकिलिंग केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक है। दुनिया के कई देशों में साइकिल को बढ़ावा देने

होता है। भारत में भी कई शहर जो है साइकिल अनुकूल बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साइकिल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है दोस्तों, तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है। साइकिल चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। साइकिल चालक को चाहिए कि यातायात नियमों का पालन करें, रात में रिफ्लेक्टर या लाइट का उपयोग करें, सड़क पर सावधानी पूर्वक चलें, जहां संभव हो हेलमेट पहनें, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए साइकिल न चलाएं। सुरक्षित साइकिलिंग ही आनंददायक साइकिलिंग है और एक छोटी आदत जो है वो बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कल्पना कीजिए, यदि हम सप्ताह में एक या दो दिन छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें तो क्या होगा। हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, सड़क पर वाहनों की भीड़ कम होगी। विश्व साइकिल दिवस दोस्तों हमें ये याद दिलाता है कि विकास केवल नई तकनीकों और बड़े साधनों से ही नहीं, बल्कि कभी कभी सबसे सरल समाधान से भी प्रभावित होता है। साइकिल स्वास्थ्य का साथी है, पर्यावरण का मित्र है, आर्थिक बचत का एक माध्यम है और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए इस विश्व साइकिल दिवस पर हम संकल्प लें कि जहां संभव हो छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे और स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में अपना योगदान देंगे। साइकिल के दो पहिए केवल सड़क पर नहीं चलते, बल्कि वे स्वास्थ्य, पर्यावरण और बेहतर भविष्य की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम साइकिल का उपयोग जो है वो करेंगे।

जी दोस्तों, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और बताने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस रहता है youthexpressuru@gmail.com। फिलहाल प्रोग्राम से जाने की इजाज़त दें आपकी रेडियो साथी डिम्पल शर्मा को।

युवा साथियों ने सुना अभी अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। कार्यक्रम वीरुण में जानिए हमारी आज की सायंकालीन सभा में शीर्षक कार्यक्रम और उनका प्रसारण सुनाएं।

शाम 6:10 पर आप सुनिए देशभक्ति फिल्मी गीत। हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा प्राकृतिक खेती। एक और चर्चा होगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। अलावा इसके आप सुनेंगे चर्चा दुधारू पशुओं की समुचित देखभाल, बाजार भाव, मौसम की जानकारी के साथ साथ कल के कार्यक्रम भी इसमें बताए जाएंगे। आप सुनेंगे कुछ लोक रचनाएं। रात्रि 8 बजे आप सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

रात्रि 9:15 पर आप सुनिए राजस्थानी लोक संगीत, 10 आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत। सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 10:30 का।

समाचार और रिले हमारे केंद्र से इस प्रकार से रहेगा। शाम 6 बजे आप सुनिए हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचारों के 6:05 पर। इन समाचारों को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:20 पर आप सुनिए दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार। शाम 6:30 पर हिंदी में और शाम 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आपके लिए जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। जयपुर से आप सुनेगा जिले की चिट्ठी, समय रहेगा शाम 6:40 का। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे आप सुनिए न्यूज 8:09 सभा के अंत में यानी रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

हम आपको पुनः बता दें, शाम 7 बजे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी में सुनिए चर्चा दुधारू पशुओं की समुचित देखभाल। एक और चर्चा होगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना, चर्चा आप सुनेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। अलावा इसके आप सुनेंगे कुछ लोक रचनाएं, बाजार भाव, मौसम की जानकारी के साथ साथ कल के कार्यक्रम भी इसमें बताए जाएंगे।

रात्रि 8 बजे सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। रात्रि 9 बजकर 15 मिनट पर आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से राजस्थानी लोक संगीत।

0: कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना, यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। इन समाचारों को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरम्भ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
2: ATF price stabilization fund mein
5: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
4: ATF price stabilization support will be in force for a period of 36 months. International ATF prices have increased 2.5 times from 60.5 rupees per litre in March to 142 rupees per litre in May this year due to the crisis in West Asia. The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in the Delhi NCR area with a financial outlay of 9,585 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha, spanning a total length of over 163 kilometres. He said the total cost of the project will be over 8,300 crore rupees. In Karnataka, senior Congress leader D.K. Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of the state today. Governor Thawar Chand Gehlot administered the oath of office. Dr. G. Parmeshwar, who held the home portfolio in the Siddaramaiah cabinet, was sworn in as Deputy Chief Minister. 12 legislators also took oath as cabinet ministers. Several senior Congress leaders, including Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge, Chief Ministers of Telangana, Kerala and Himachal Pradesh attended the ceremony. Prime Minister Narendra Modi has congratulated D.K. Shivakumar on taking oath as Chief Minister. In a social media post, Mr. Modi conveyed best wishes to him for his tenure. In West Bengal, political developments have intensified amid indications of a split in the Trinamool Congress. Expelled TMC MLA Ritobrata Banerjee has staked claim to the post of Leader of Opposition in the State Assembly, claiming the support of 58 legislators. According to Assembly sources, a letter signed by 58 MLAs was submitted to Speaker Ratindra Bose, seeking recognition of Banerjee's faction as the real Trinamool Congress. The group has nominated Akhruz Zaman, MLA from Raghunath Ganj in Murshidabad, as Chief Whip. Meanwhile, the Trinamool Congress has announced Shobhan Dev Chattopadhyay as Leader of the House, with Ashima Patra and Noyana Bandyopadhyay as Deputy Leaders and Firhad Hakim as the Chief Whip. In a massive fire at a hotel in Malviya Nagar in Delhi, 21 people lost their lives while 40 were rescued this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Rescue and search operations are underway. The cause of the fire is yet to be ascertained. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the fire incident. Benchmark domestic equity indices ended with moderate losses today. The BSE Sensex dropped 304 points to close at 74,346. The NSE Nifty slipped 78 points to settle at 23,406. The broader market at the National Stock Exchange also ended in the negative zone. In badminton, India's Ayush Shetty entered the second round of the Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang in a comeback victory, winning 8-21, 22-20, 21-15. India also registered a notable win in mixed doubles with Rohan Kapoor and Ritwik Agarde, defeating Chinese Taipei's Yang Po Suan and Hu Ling Fang. And with that, we end this news bulletin.
0: हम आकाशवाणी के चूरू के अंदर से बोल रहे हैं. प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीत. सबसे पहले सुनते हैं हकीकत फिल्म गीत. आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और उनके साथियों की है.

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे हकीकत फिल्म का देशभक्ति गीत। आइए अब सुनते हैं माँ तुझे सलाम, इस फिल्म का गीत आवाज़ें शंकर महादेवन और उनके साथियों की हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता मंजूर की। भारत सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार, 15-20 दिनों में देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंचने की संभावना। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील, इसे स्वस्थ, सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का प्रतीक बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर हवाई यात्रा को महंगी होने से बचाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष ATF को मंजूरी दे दी है। विमान ईंधन की कीमतों में आए भारी उछाल से इस क्षेत्र को बचाने के लिए ये फंड बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य संकट के समय उचित कीमत पर ईंधन की आपूर्ति करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इससे कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विमानन क्षेत्र से जुड़े 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे।
1: क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया।
2: फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को आधुनिक वाहनों में बदलने की योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सहयोग से लागू की जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली के मालवीय नगर में आज एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना में 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आगजनी की इस घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। देश में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को सशक्त करने के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भी कई जनजातीय वर्गों को सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है। देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचने के लिए जागरूकता जरूरी है। श्रीमती मुर्मू ने सभी एजेंसियों और हितधारकों से जनजातीय कल्याण से जुड़े हर बिंदु पर ध्यान देने को कहा।
3: आप सबको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि हर प्रोजेक्ट की फाइल

0: गवर्नमेंट का उद्देश्य किसी मनुष्यों के सहायता करना है। सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को ये सोचना है कि प्रत्येक गर्भवती माँ को पर्याप्त पोषण मिले, प्रत्येक जनजातीय बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, प्रत्येक जनजातीय युवा को गरिमापूर्ण आजीविका प्राप्त हो और प्रत्येक जनजातीय परिवार कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम से लाभान्वित।
1: भारत सौर ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। देश ने सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की स्थिति दुनिया भर में मजबूत हो रही है। श्री जोशी ने कहा कि देश में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तेज गति से बढ़ रहा है, इससे ऊर्जा सुरक्षा सशक्त हो रही है। इधर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कोयला आधारित विद्युत गृहों ने 7171 मेगावाट बिजली उत्पादन कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रदेश की 7580 मेगावाट क्षमता की 23 इकाइयों ने कल ये उपलब्धि हासिल की। प्रदेश के 26 जिलों के दो दो ब्लॉक में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। 2027 तक प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली देने की कवायद में अब चित्तौड़गढ़ और टोंक जिला भी शामिल हो गया है। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि वर्तमान में अजमेर डिस्कॉम के 13, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 10 और जोधपुर निगम के 3 जिलों के दो दो ब्लॉक में दिन में बिजली मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में तेज अंधड़, बरसात और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है। 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। साथ ही कई हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं भी चल सकती हैं। विभाग के अनुसार आंधी बारिश का ये सिलसिला 6 जून तक बना रह सकता है। इस दौरान हीट वेव से राहत का दौर बना रहेगा। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून के अगले 15 से 20 दिनों में विभिन्न स्थानों पर पहुंचने की संभावना है।

0: या आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से अवैध मॉडिफिकेशन और काली फिल्म वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सतर्कता बढ़ाने पर भी जोर दिया। राज्य सरकार सुशासन को मजबूत करने के लिए तकनीक और AI आधारित प्रणालियों के उपयोग पर जोर दे रही है। प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 की अहम भूमिका है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में आयोजित वेबिनार में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल वित्तीय प्रणाली में डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसीलिए नियमित सुरक्षा ऑडिट के साथ ही साइबर खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। राज्य सरकार के एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म राजकाज ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली को नई गति और दक्षता प्रदान की है। इससे शासन प्रक्रियाएं ज्यादा जवाबदेही और नागरिक केंद्रित हुई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से विकसित इस प्लेटफॉर्म से 71 विभागों और 57,000 से अधिक कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है। साथ ही राजकाज के जरिए अब तक 50 लाख से ज्यादा ई-फाइलें सृजित की जा चुकी हैं। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में श्री मांडविया ने कहा है कि साइकिल स्वस्थ, सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की पहचान है, ये हमें फिट रखती है। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। श्री मांडविया ने फिट इंडिया आंदोलन के तहत चलाए जा रहे संडे ऑन साइकिल अभियान से जुड़ने के लिए युवाओं की सराहना की।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
1: राज्य की ग्रामीण आबादी को अब घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। सहकार से समृद्धि अभियान के तहत सहकारिता विभाग ने ये महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों, पैक्स और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के जरिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए नाबार्ड की सहायता से इन्हें माइक्रो ATM दिए जा रहे हैं। इससे खातों के बैलेंस, वित्तीय लेनदेन की जानकारी मिल सकेगी। वहीं समितियों के व्यवस्थापक ग्रामीणों के घर और कार्यस्थलों पर जाकर उनके खाते खोल सकेंगे और जमा संग्रहण भी कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता मंजूर की। भारत सौर ऊर्जा क्षमता में 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल केरलम में प्रवेश के आसार, 15 से 20 दिनों में देश के विभिन्न स्थानों तक पहुँचने की संभावना। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की साइकिल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील, इसे स्वस्थ, सक्रिय और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का प्रतीक बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख बांके बिहारी शर्मा ने तैयार किया है। जिले में बीते महीने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, विधिक जागरूकता और जन कल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार द्वारा संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जिले की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र रहा। अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ गंगा दशहरा के अवसर पर कैला देवी स्थित कालीसिल घाट से किया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। अभियान के दौरान जिले भर में स्वच्छता, श्रमदान, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कृषि विज्ञान केंद्र एकुरासी का निरीक्षण कर नवीन फार्म पौंड का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने किसानों से संवाद कर जल संरक्षण, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उनके करौली प्रवास के दौरान पर्यावरण चेतना, जन स्वास्थ्य और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा भी आयोजित की गई। मई में पांचना बांध के पानी को गैर कमांड क्षेत्र की नहरों में छोड़ने का मुद्दा भी चर्चा में रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की सफाई का काम शुरू किया गया। कमांड क्षेत्र के किसानों ने पहले 39 गांवों तक सिंचाई जल पहुंचाने की मांग रखी, जबकि गैर कमांड क्षेत्र के किसान भी अपनी मांगों को लेकर सक्रिय रहे। प्रशासन पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी करता रहा। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालय स्थित डाइट परिसर में एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस दौरान निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा 132 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। शिविर में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम चल रहा है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया तथा गुणवत्तापूर्ण तथा त्रुटि रहित कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में राज्य सरकार का ग्राम रथ अभियान भी ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना रहा। अभियान के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिलने के साथ उनकी आजीविका और जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार देखने को मिला। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए करौली जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर नीति आयोग द्वारा जिले को 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। राशि के प्रभावी उपयोग और शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीणा ने जिला कारागृह तथा किशोर गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों एवं बालकों को उनके अधिकारों, निशुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा नालसा हेल्पलाइन की जानकारी प्रदान की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से तंबाकू नियंत्रण अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई के साथ साथ विद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनजाति गरिमा उत्सव के तहत जिले के चयनित ग्रामों में लाभार्थी सैचुरेशन शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया तथा स्वास्थ्य परीक्षण जागरूकता गतिविधियां चलाई गई। करौली जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
4: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपे से संजय बगत्रा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल तेल कंपनियां ने घरों और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आसारों 10,000 करोड़ रुपया एक मुश्त बजटीय मदद मंजूर करी। भारत सौर ऊर्जा बूता में 155 गीगावाट रो आंकड़ों पार करने दुनिया रो दूजो सबू मोटो बाजार बन्यो। दक्षिण पश्चिम मानसून रे काले केरलम में आवणरा आसार। 15-20 दिन में देशरा न्यारा न्यारा ठोड़ा ताई पूगण री आस और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया री साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावण री अरज इन ने स्वस्थ सक्रिय और पर्यावरण मुजब जीवन शैली रो प्रतीक बताया। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार पश्चिम एशिया संकट ने ध्यान में रखता हवाई यात्रा ने महंगी होवण बचावण सारो मूल्य स्थिरीकरण कोष ETF ने मंजूरी दे दी है। विमान ईंधन री कीमत में आया उछालू ई हल्का ने बचावण सारो ओ फंड बनायो जायला। इनरो मकसद आपदारी बगैर वाजिब कीमत माथे ईंधन री सप्लाई करनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज भी कैबिनेट री मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसला माथे मोहर लागी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट रा फैसला री जानकारी देवता मीडिया ने बतायो के इनु कीपना ते बनाई राखण माय मदद मिलेला। उन्होंने कहो के ई फैसलाऊ विमानन हल्काऊ जुड़िया 77 लाख रोजगार सुरक्षित वह सकेला।
5: आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया।
6: फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
4: मंत्रिमंडल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी हल्का माए पुराना ट्रका और बसा ने आधुनिक वाहन माए बदलन री योजना ने मंजूरी दी है। आ योजना

0: वठै हादसामा 40 लोगाने हिफाजती बारे निकालिज्या और इला सारू कनेरा अस्पतालामा भर्ती कराइज्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसा माथे गहरो दुख जतावना कयो के पीड़िता ने हर चाइज थी मदद दी जावे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में मरण वाला रा परिवार ने 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह रकम दी जाएगा। घायला ने 50,000 रुपए की मदद देवन रो ऐलान करीजियो है। राज्यपाल हरिभा बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हादसा ने घनो दुखदायी बताया है, वरना हादसा में जान गवा देवन वाला रा परिवार जन रे प्रति गहरो शोक जतायो है। देश में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां और परियोजनावां ने मजबूत करण सारू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन वियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनरो उद्घाटन करियो। ई मौके राष्ट्रपति कहो के जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूपों घणो मजबूत है, इनने आगे बढ़ावण री कोशिश करी जावणी चाहिए। वणा कहो के अजे कई जनजातीय तबका ने सरकारी योजनावां री जानकारी नहीं है। देशरा हर गांव और हर मिनक ताई विकास पुगाउन सारू जाग जगावनो जरूरी है। श्रीमती मुर्मू सगली एजेंसियां और हितधारकाओं जनजातीय कल्याणों जुड़िया हर बिंदु माथे ध्यान देवण ने कयो।
1: आप सबको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि हर प्रोजेक्ट की फाइल और डॉक्यूमेंट का उद्देश्य किसी मनुष्य के सहायता करना है। सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को ये सोचना है कि प्रत्येक गर्भवती माँ को पर्याप्त पोषण मिले, प्रत्येक जनजातीय बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, प्रत्येक जनजातीय युवा को गरिमापूर्ण आजीविका प्राप्त हो और प्रत्येक जनजातीय परिवार कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम से लाभान्वित।
0: भारत सौर ऊर्जा भूतामा बढ़वार करने दुनिया रो दूजो सब मोटो सौर ऊर्जा बाजार बन गयो है। देश सौर ऊर्जा भूता में 155 गीगावाट रो आंकड़ो पार कर लियो है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो के रिन्यूएबल एनर्जी रा हलका माए भारत रा हालात दुनिया भर माए मजबूत वैरिया है। श्री जोशी कहो के देश माए स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तेज गतियों पदरियो है, इनो ऊर्जा हिफाजत मजबूत वैरी है। अठीने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम रा कोयला आधारित विद्युत ग्रह 7171 मेगावाट बिजली उत्पादन करने अजे ताई रो सब ठाऊ प्रदर्शन कयो है। प्रदेश री 7580 मेगावाट बूतारी 23 इकाइयां काले कामयाबी हासिल करी। प्रदेश रा 26 जिला रा 2-2 ब्लॉक माए काश्तकार ने दिन माए बिजली मुहैया कराई जावे। साल 2027 ताई प्रदेश रा खेती उपभोक्ताओं ने दिन माय बिजली देवण री कवायद माय अबे चित्तौड़गढ़ और टोंक जिला भेड़ा वे गया है। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा बतायो के अबार अजमेर डिस्कॉम रा 14 माय 13, जयपुर विद्युत वितरण निगम रा 15 माय 10 और जोधपुर निगम रा 12 माय 3 जिला रा 2-2 ब्लॉक माय दिन माय बिजली मिल रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। मौसम महकमो प्रदेश रा कई हल्का माए तेज अंधड़ बिरखा और ओलापड़न सारू चेताया है। 5 जिला माए बिरखा रो ऑरेंज और 5 जिला माए येलो अलर्ट बताई जो है। साथ ही कई हल्का माए तेज हवाई चाल सके। महकमा मुजब आंधी बिरखा रो ओ सिलसिलो 6 जून तई बण्यो रह सके है। ई दौरान हीट वेव आराम रो दौर बण्यो रहवेला। वठी भारत मौसम विज्ञान केंद्र IMD मुजब कालेऊ दक्षिण पश्चिम मानसून रे केरलम माए आवण री आस बताई जी है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के मानसून रा आवता 15-20 दिना माए न्यारी न्यारी थोड़ा ताई पुगण री आस है।
2: वर्तमान में

0: किया जा चुका है। वहीं राजस्थान के भी ज्यादातर भागों में इस वर्ष मानसून ऋतु के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज गृह विभाग री आला दर्जा री मीटिंग ली। मुख्यमंत्री रेवास माते भी मीटिंग में श्री शर्मा पुलिस प्रशासन और परिवहन महकमा कानियों गैर कानूनी मोडिफिकेशन और काली फिल्म वाला वाहना माथे कड़ी कार्रवाई रा निर्देश दिया। साथ ही नशा माथे असर

0: आकस लगावण सारो सरहदी हल्का माए खास निगरानी और सावचेती बधावण माथे जोरी दियो। राज्य सरकार सुशासन ने मजबूत करण सारो तकनीक और एआई आधारित प्रणालियां ने काम माए लेवण माथे जोर दियो। प्रदेश रा माली बंदोबस्त ने बत्तियों बत्ती साफ गोई जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनावण माए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 री खास भूमिका है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए विया वेबिनार माए रोकड़ प्रबंधन प्रणाली ने मजबूत बनावण री बात कही। वणा साइबर हिफाजत ने ठावी प्राथमिकता देवण रा निर्देश दिया। मुख्य सचिव कहो कि डिजिटल रोकड़ प्रणाली में डेटा हिफाजत महत्व है, ई कारण बरोबर हिफाजती ऑडिट रे साथ ही साइबर खतरा रे प्रति जाग बधाई जावे। विश्व साइकिल दिवस रे मौके केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया लोगों साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावण री अर्ज करी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे आपरा संदेश माए श्री मांडविया कहो कि साइकिल स्वस्थ सक्रिय और पर्यावरण मुजब जीवन शैली री पिछाण है और आपा ने फिट राखे है। वणा कहो कि इणना काम माए लेवणो प्रदूषण माए कमी आवेला, साथ ही पेट्रोल डीजल री बचत वेला श्री मांडविया फिट इंडिया आंदोलन रे तहत चलाया जा रिया संडे ऑन साइकिल अभियान नु जुड़न सारू नौजवाना री सराहना करी।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
0: विश्व साइकिल दिवस रे मौके प्रदेश माई कई छोड़ा साइकिल रैली राखी जी। करौली माई भी रैली री मार्फत बिना ईंधन वाला परिवहन रा साधन साइकिल ने चावो बनावण रो संदेश दी रिजियो। ई मौके हनुमानगढ़ माई साइकिल जागरूकता संगोष्ठी भी। रेलवे बोर्ड कोटाओं उज्जैन रे बीच पहली बार सीधी मेमो ट्रेन सेवा ने मंजूरी दे दी है। इनु राजस्थान और मध्य प्रदेश रे बीच धार्मिक और कारोबारी संपर्क और मजबूत वेला। बोर्ड कोटा चौमहला मेमो ट्रेन रो पसारो उज्जैन तई करण री मंजूरी दी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन बतायो कि आ रेल सेवा नुआ बगत माथे बरोबर चालती रहेला। कोटाओं सवाना पूनी 6 बजे रवाना वेर दोपहरा 12 बजे उज्जैन पुगेला, पाछा आवता दोपहरा 12:30 बजे उज्जैन नु रवाना वेर सिंजा 7 बजे कोटा पुगेला। चुनावी प्रक्रिया और अभियानारी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथमा और नवाचारा माथे बतल सारू नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुई हो। चुनाव आयोग कानियो वेरियो ओ दो दिन रो इस सम्मेलन में जिला चुनाव अहलकार, मतदाता पंजीकरण अहलकार, शिक्षाविद, शोधकर्ता और चुनावी साक्षरता क्लब रा सदस्य भेड़ा वेरिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बतायो कि सम्मेलन में भ्रम वाली सूचनावा, दुष्प्रचार, AI बनिया डीप फेक समेत दूजा मुद्दा माथे विचार करियो जावे। राज्य री ग्रामीण आबादी रो अबे घरां बैठ्या बैंकिंग सुविधा मिलेला। सहकार उ समृद्धि अभियान रे तहत सहकारिता महकमा अ महत्व पहल करी है। महकमा रा शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा बतायो के ग्राम सेवा सहकारी समितियां, पैक्स और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां रे मार्फत डोर स्टेप बैंकिंग सेवा ने पसारो दियो जावे है। अबे आखिर में खास समाचार एक फिर सुन रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल तेल कंपनियां ने घरों और अंतर्राष्ट्रीय उड़ाना सारू 10,000 करोड़ रुपया री एक मुस्त बजटीय मदद मंजूर करी। भारत सौर ऊर्जा बूंता में 155 गीगावाट रो आंकड़ो पार करने दुनिया रो दूजो सबू मोटो बाजार बन्यो। दक्षिण पश्चिम मानसून रे काले केरलम में आवण रा आसार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया री साइकिल ने दैनिक जीवन रो हिस्सो बनावण री अरज। ने साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनना सगला किसान भाई बहना ने लाडे श्रोता ने टाबरा ने बड़े बुजुर्ग ने सैन भाई राजकुमार का निशो
2: और पंकज भाई का न्यू मोकड़ा मोकड़ा राम राम।
1: तो पंकज भाई देखो का अब की बार गर्मी तो चागे पड़ रही है
2: भाई, बखत भी तो है गर्मी को।
1: और तावड़ा यहाँ मान लो के खेत जावाने दिन गाने जना 10 बजे बाद में तो काम करी जी
2: चांटा चुंटी सी लाग जाए। देखो वो तावड़ो जो कौन है वो आने वाली फसल रे मुजब घणो जरूरी है, ठीक है ना। जमीन जकी अपनी भूम जकी ने बस शुद्ध कीटाणु रहित और उपयोगी मतलब जकी के मायने अपनी जकी खेती जकी पन पक्ष के उपजाऊ पड़ो जो कहने वो इतावड़े के पेटे आओगे जमीन में
1: वो भी यार भी कसा कसा देखो किसान भाई जहाँ खेत का मायने खाद गुटलो गिर दियो तो बिन खंडा के और पाड़ करवा रहे कई पलाऊ कटा रहे कई डिस कटा रहे कई हेरो कटा रहे तो बा पाड़ भी बहुत लाभदायक है
2: भाई। देखो के गैलडे आ 5-4 दिन हूं थोड़ा सा आप पहले जावा जो 4-5 दिन लगातार आंधी आई जोर की ये आंधी ने किसान जो को वो डिक्के या के खेत के मा छणवा डटन है जकी ऊपरी माटी आके पड़े ने बस वो उपजाऊ हो उपजाऊ पण ज्यादा है। किसान जो को है बान करे खेत में दाबा दे पर सोटी है सीणी है बुई है ए दाब है, ठीक है ना। जगह जगह खाडा खोद है बे ई बात भी करे के अठे ऊपरी माटी जकी बा आके डटे
1: भाई। देखो के छणवा डटती ने बीजा देखो पहली या देसन बाजरी बात आ
2: हां
1: तो वह बाजरी बहुत तकड़ी
2: निराली होती
1: लगती फिर बिका
2: लिली पड़ जाती बा
1: लिली पड़ जाती रे बिका या मान लियो कभी
2: सिटी तोड़ गोबर लाई सवा सवा हाथ का डेढ़ डेढ़ हाथ का सिट्टा जकाई ने मतलब डोको जको ने वो जानती जंटी का माकी निकल जा तो इतो पोषण मिला कर तो बीज जगह कमाई ने।
1: और फिर दूसरी बात है आज मिनख जी तो छाणो हुए ने भी तो को ने पहली पहली के करता के प्राकृतिक खेती होती है
2: हाँ।
1: भी कमाई देखो खेत कमाई जिया सोमन बाजरी उगी तो किसान संतोषी प्रवृत्ति को तो वो क्या है के राबड़ी छा प्याजी के सगे बाजरी की रोटी खा के संतोष होया कर तो मन में और भी अनाज में भी बहुत ताकत होया करती
2: ताकत तो ही ठीक है। ताकत को कारण एक तो देखो देसी दाणो दूसरों भी में कोई भी पेस्टिसाइड कौन जाया कर तो मतलब आज की और पहली की जो तुलना करा तो बने ही कोनी तुलना भाई। आज उगने लेके और भंडारण ताई आप हर जगह पेस्टिसाइड को अंधाधुंध उपयोग करे लगे आपने खेत बायो ब्यू पहली शुरू हो जाओ फिर जय मान लो पहली निनाण करता आज अगले निनाण को छिड़काव कर दियो स्प्रे कर दियो इबर कौन बोलियो दोबारा बाल दियो फिर नाज बढ़ रही होनी बदवार लेन को स्प्रे कर दियो अब स्प्रे सावड़ को नहीं आया चोको को नहीं आया गणो फर्क कौन पड़ियो एक और कर दियो नाज बुद्ध गयो अभी का लाग को नहीं हो रही लाग आने को फाल आने को स्प्रे कर दियो। मन एक बात तो जमीन जकी है बात तो एक ही होगी सगड़ा सपरे तो विपरी हो गया सगड़ा फसल पर ही थोड़ी पड़ी जमीन पर भी पड़ता हो गया
1: भाई जमीन पर पड़े फिर एक बात हो रही है अब जी अंधे कहो कह बायो तो 20 दिन कहे कह एक

0: मैंने कोई खरपतवार नहीं उगुणो चाहिए, इसलिए स्प्रे कर दियो।
1: हाँ तो और के कुछ
0: तो अब थे या बताओ कह दुखो काम आप हाथ से करया करता निनाल करया करता हाँ। अब भी की ओर वो स्प्रे कद कर देसी
1: कौन करे
0: ऐ। फिर दूसरी बात का आ जमीन है इनके है कि जितनी अपन निरोगी राक्षा ने
1: काई दे आपनो
0: भई। अब जहाँ कोई आदमी को सिर दुख रही तो वो मतलब ठंडो पानी पिए आरामदायक जगह पर बैठे है या थोड़ी देर लेट जा, एक तो बीस भी सिर दर्द रुक है, एक सीधी कोई 500 एमजी की गोली गटका ली, बीस भी को सिर रुक है, तो दोनों बात में फर्क तो आई।
1: अंतर है, अंतर है। एक चीज तो है कि शरीर की जो अवस्था है भी के अनुसार चाल नहीं जरूरत है, शरीर की गति जो की सब चीजें मानव परिस्थितियां के हिसाब से चलना है, भले गोली गुटको भले कोई और उपचार हो या तो आप भी की गति ने बढ़ावा या भी गति ने कम करा तो वह आगे जाके तो सिद्धेगी भाई। चीज जमीन के मायने एक तो स्वाभाविक हो कोई चीज और एक भी मायने आप पेस्टिसाइड या रसायन गेर के भी की जकी क्रिया भी बढ़ा दिया घटा दिया तो अंतर तो रहेगा भी चीज को।
0: तो आपने जकी प्राकृतिक खेती है भी के मायने आई बात है कि एक तो केकरा का आप रसायना को छिड़काव कम करा करा ही नहीं
1: हाँ।
0: भाई देसी जिया गोबर की खाद है वह काम में लियो बा काम में लियो बढ़िया तरीके से बिगी बाई तो करो
1: हाँ।
0: पहली देखो कजिया माले बाजरी बादे था गुआर बाईडी आउडी फेर के करता के गुआर बने से पहली मूंग बने से पहली भी जमीन की पाड़ करया करता और पाड़ भी बा के हिसाब से को उम्र निकल गयो तो दूसरो उम्र है जो भी पाली पाली सा लिया करतो यानी यहां मान लियो का एक इंच भी जगह बिना पाड़ करेड़ी
1: रहती
0: को नहीं फेर भी का मान ने किया का जी हिसाब से उम्र का डेढ़ा है बस विपरीत दिशा
1: अड़ी अड़ी
0: अड़ी अड़ी दिशा का मान भी गुआर बात आ तो बा गुआर की फलियां को और भी गुआर की बटवार को और भी को सारो काम अलग हो।
1: मतलब ताकत की बात बताऊं था ना मैं कि टेढ़े का गुआर का जाड़ा कई हिस्सा देखें जका ठाडो ठाडो मोटियारो है ना बिन टिका दी पट्टे को नहीं खींच के इतो कसूती लाग हो जाती भी गिर यही फड़ी लागती। अब एक चीज को गौर करियोगे थे भी देखियोगे अपना किसान भाई जका बराबर खेती बाड़ी जुड़े डाई बे भी देखता रही अपना जका गाँव है कोई से शिवाने थी चला जाओ हर गांव में जाके निगाह कर लियो पूरे गांव के मायने पेस्टिसाइड जकी अभी की इस समय चर्चा चलेगी तू कौन से लेव में ओ लेव में लो चोको में लो जो अलग चलेगी सब छिड़के ने बिके बाद में भी थने गांव गेल 5-7-10 किसान इशा ला देगा जका पेस्टिसाइड तो दूर की बात है वह आज तक आपके खेत में डीएपी और यूरिया भी कौन बाड़ियो और हमेशा देसी नाज भाई हो चाहे बाजरी हो चाहे मूंग हो चाहे मोट हो चाहे चूण हो चाहे तिल हो किसो भी धान हो चाहे गुआर हो सदा देसी भाई और बे आपको घर को आगो चलान ला रही आपका धन पशु को चलान ला रही और बढ़िया तरीकों खेती करके 2 रुपया बपरा के आपके घर की गाड़ी अभी भी गुड़ खान ला रही। देसी को एक फायदा और है जे मान लो थोड़ो बड़ो उत्पादन कम है तो विश्व थानु भाव सवायो मिलेगो हालांकि उत्पादन अगर सही तरीके से सुधार के जाए थे बतायो चोखी गलेड़ी गोबर की खाद है जो क्या पांगे दी दो बान करवा दी बखत पर बालियो और चोखी रुखाली राख दी पूरे टाइम के मायने आपने फसल के अड़को नहीं आन दियो निनान के टाइम निनान कर दियो रुखाली के टाइम रुखाली कर दी सब जरूरी बाने की बात है और काम की सही हो समय पर जो होने बिकी उड़ भी को नहीं हो एक सांख्य है देखो के बांको देलो रले दूल में जांका खेत पछेता में बांको देलो रले दूल में जांका खेत पछेता में और बीज बखत पर बाया निपजे हीरा बालू रहता में।
0: देखो बात तो है देखो पुरका बाड़ा मोती निपजे
1: निपजे सा
0: तो अब देखो के अब जे थे बताई के कई किसान इसे भी मिल जाए
1: हां गांव गेल थाना
0: आज तक रसायना को प्रयोग
1: कौन करियो आज तक की कौन करियो।
0: अब देखो पहली बात तो ये है कि आपा कोई बीमारी लगी को भी पहली भी उपचार करने लगे तो वो गलत है
1: हाँ हाँ।
0: अब भी सागे सागे जगह देसी तरीका है जहा देसी गाय को गोबर है गोमूत्र है बेसन है
1: हाँ।
0: गुड़ है
1: खाटी छा है
0: खाटी छा है तो आंको जिया मिश्रण बना के और आपा जिया मान लो खेत का मायने काम में ले
1: हाँ।
0: तो एक हमारे नुकसान होने वाली कोई सी चीज
1: नहीं।

0: देसी कीटनाशक की संख्या देश कहां पा
1: और बिक बाद में जिया मतलब बीज है तो बीजा को जिया उपचार तो ओ करने के लिए बीज या मान लो गोमूत्र है गोबर है चुन्ने को मिश्रण है
0: हाँ।
1: तो पहली करता नहीं
0: करीता
1: तो बीज क्या करता का है बीज के ऊपर फुंफुद को नहीं लगे
0: कर लागे।
1: फिर एक बात और है का कोई भी मिट्टी हो चाहे कोई मिनख हो चाहे पशु बिना पर ज्यादत घेर ध्यान है वो फिर भी कई हिसाब से चालू सी
0: हाँ गल जाए तो वो
1: अब थे बार जी हम बताए नहीं का कई किसान है जगह डीएपी यूरिया ही कौन छिड़का
0: हाँ कौन बड़ी खेतों आज तक
1: अब थे मैंने एक बात बताओ का कई तो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है
0: हाँ वह थोड़ा अंतर तो रहे
1: जहाँ दहरी का खेत है और कालती मट्टी नीचे है
0: हाँ।
1: या दौलती मट्टी नीचे जाए तो भी खेत में तो पाड़ पाड़ करानी पड़ती और बाकी है मतई चिकनाई ऊपर आवो कर
0: खेत उपजाऊ भी हो वे मान लो समतल भी हो वे कई खेत जगह दूलड़ी धरती हो गए कई जगह छाप लगा कई जगह धूप है जमीन में बरसे जब धूप किया जा ऐसे लाग तो हो ही मैं कोई दोहराए को नहीं लेकिन एक उस तगर खेती की आप बात कराने तो बिक मायने भी परंपरागत तरीके अगर आप खेती करा तो इसी बात को नहीं आप उत्पादन भी अच्छा ले सका भी उत्पादन का दो रुपया भी अपन सावड़ मिले क्योंकि बाजार में जो देसी दानो है और रसायन रहित है बिकी खूब मांग है और स्थिति आ भी है कि अगर कोई किसान जो वास्तव में देसी नाज बारे है और वो रसायन रहित खेती कर रहे हो आपके खेत में कोई भी प्रकार को पेस्टिसाइड काम में कौन ले रहे हो तो राजकुमार भाई बोली बात का तो सार को नहीं स्थिति आए कि लोग भी के खेत ताई पूछ जाए भठों जाके लाने तैयार है
1: बिल्कुल भठों लाने तैयार है
0: मुंह माया पिसा देने तैयार है
1: एक बात और देखो कई किसान है जका मोकला जिया मान लो पशु भी रखे
0: रखे
1: दुधारू पशु रखे हैं बाको के करे दूध बेचे
0: बेचे हाँ व्यवसायिक रूप
1: और घराताणी घी चाहिए जाने वो सैरू 400 रुपया डुबी लिया आपके खेत का मान चोखो गुआर उड़ है चोखी बाजरी उड़ी है चोखा मोट मूंग उड़ है बन तो बेचे और बाजार से बिताई रुपया में वो ही भाव तो खड़को है वो ही गुआर को है तो गुआर तो बेच के आवे और खड़ा अंत लिया तो इम बताओ के पशु है जगह तकड़ा क्या उसी
0: वो गुआर चुको है वो पशु ने पोषण देसी देसी गुआर अगर आप पशु ने दे रहे हैं तो वो बहुत सारा जगह खाद्यान्न का कंटेंट है मिनरल है बहुत सारा जगह अपन पशु आहार में जगह चीज गुआर एक लो पूर्ति करे गणकरी चीज की तो
1: गुआर बहुत ताकतवर चीज हुआ है
0: हाँ गुणिया चीज है
1: पहले यहाँ कहता है एक महीने गुआर की फली खा मिन खा लेने
0: हाँ।
1: बंक कह मतलब घी खाएड़ा सो
0: घी खाएड़ा चिकना सो तो है तो गुआर
1: और फिर दूसरी बात कह जिकी आपने प्राकृतिक खेती होती ने पहले भी कमाई ने थारे याद आवे तो पांच पांच छह छह किला का खेत में मुतीरी होया करता
0: मैं तो अभी अभी मेरे मन में वो भाव आ रही हो मैं बोलियो ही को नहीं मेरे मन में भाव वो आ रही हो कि पांच पांच छह छह किलो का मतीरिया तो होता पर राजकुमार भाई थाने मीठो मतीरियो खाया कई साल होगी पहलता आवे तो
1: मैं बताऊं थाने का आजकल तो मटेरियलो कोई
0: ना ही नहीं मेल कौन रहे
1: क्योंकि वो जिद से मतलब सिंचाई की आपने सुविधा बढ़ी है ने बिक बाद में देखो इस सीजन में कोई तरबूज ऐतो खा लिया तो बात ना करे
0: तीन चार चीज होगी मैं थाने बताऊं एक तो जिकी आप पेस्टिसाइड छिड़काव की बात करी ने मटेरियल मीठो नहीं होने का सो बड़ो कारण है वो दूसरी बात ठेक दे टाबर पण में आपने देखियो के बीजा को व्यापार होया करतो
1: तो
0: ठीक है ने आपने टबरपणे में बीजा का व्यापार कौन हो आप बीजा का भाई लाडू कर करता गुड़ का लाडू बनाता बीजा ने भून के बांगे नमक मिर्च लगा के नमकीन बनाया करता जकी दादी नानी ताई माँ इबे के करती कि जकी मीठी मतीरी होती भी मतीरी ने खाने के बाद में भी मतीरी का जगह बीज आने वे कपली के मायने भेड़ा करती डबरी जकी होती ने बिग माइन पे बीज जकाई पे भी डबरी का माँ सुखाता वहां बीजा ने मतलब कापे को जो रस है ना वो बा बीजा का माँ तो वे बीज वही मतीरी मीठी है और बा मैन बो रस आता तो और मीठा होता और बा बीजा ने सहज के रास्ता आन आले चौमा से ताई के अब की बार खेती के मायने ए बावांगा ठीक है ना मतीरी जकी है बस धीरे धीरे धीरे लाग रही घनी है मतीरी की लाग बहुत है मतीरिया लागे घना बड़ा तरह नहीं लागे तो छोटा लागे लेकिन मीठा कौन लाग रहा इन अपना अपना हाथों खोदियो सिस्टम
1: मीठा कौन लाग रहा है फिर एक बात और इनका

0: पुराने टाइम में क्यों तो कह जखा मीठा मतीरिया का बीज होता नहीं
1: हाँ
0: बिन के है का निर्वाला है कुलड़ी है
1: हाँ राखता कह ला रहे हैं राखता
0: एर मिठो जो यहाँ काकड़ी होतो ने
1: हाँ राख
0: की भी पापड़ी है
1: गली काट के राख पर आपा कौन सुखाया करता के भी नहीं
0: और पे मतीरिया इतना मीठा हो जाता के यह जीम आती जन कपे नहीं खा जाऊं
1: हाँ बहुत जोर का बहुत
0: सिपड़िया कर कर
1: बहुत तगड़ा
0: एर मतीरिया घना ही होता जना सिपड़िया ही कम करता सीधी डबरी
1: डबरी खाया करता
0: डबरी खाता एर आ घराला ने चिंता कौन देती का भाई बातो पुगायो को नहीं क्यों
1: हाँ,
0: बगाया
1: वहां में जाऊं हां कोई बात
0: कर ले मत देख
1: लेट सेट भी हो गया आगे पीछे हो गया तो पेट भर लेसी पेट भर लेसी अंतर रहे आंसी जा को
0: और एक बात और है के आपा जी हम अपना जगह पुराना तरीका ने बस सस्ता भी
1: हां खेती महंगी को नहीं कोई टाइम सस्ती परंपरागत जी की खेती भी कोई घणो खर्चो को लाग्या करतो
0: तो अपन ने की एक प्राकृतिक खेती की ओर लौटनो चीज है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: समय की मांग है
1: समय की मांग है एक चीज और भी देखी गई थी गैल ने जकी बड़ी महामारी आई ना कोरोना एक महीने भी आ बात साबित हुई के जको देसी नाज है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का मायने बहुत लाभदायक है तो एक तो देसी नाज और एक पेस्टिसाइड रहित तो भी की ओडी कोनी ओनो वो दुगनो दुगनो काम करे वो तो आपा अपने हितालों अर्जाई करा कि आपने जकी परंपरागत खेती है जकी रसायन मुक्त ही जकी कोई कीटनाशक आपा कोने कदी काम में लियो देसी तरीको आपने जकी खाद गलेड़ी सड़ेड़ी ने भी खाद ने गेरा बढ़िया बान करावा बढ़िया खेत ने सुवारेड़ो सुधारेड़ो रखा टेम पर भी निभावा तो निश्चित रूप में बढ़िया तो नाज वसी बिनाज की बढ़िया आपने कीमत मिल सी अब हितालुओं को मनोरंजन करावा और एक मीठी सी लोक रचना सुनावा।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: तो अभी आप संदेश सुनियो, और संदेश से पहले सीमा मिश्रा और साथ ही गाइडी लोक रचना सुनी। और अब देखो बात ने आगे
2: बढ़ा। हाँ टोरा,
1: कभी आप बात करी खेतीबाड़ी की,
2: करी सा

0: अब खेती बाड़ी में किया हुआ है किसान को तो सहयोग हुई हुआ और भी कमाई ने राज को सहयोग और मिल जाने जना की है कि
1: सोने पर सुहागो। अभी थे बात कर रहे हैं खेती जो की आजकल महंगी होती जा रही है तो किसान ने आर्थिक रूप मजबूत करो जा सके एक बैकअप हो वही हाल को कभी नुकसान जो हो जा तो भी नुकसान की पूर्ति को आप गेलो गाल दिया कई बार कहा ना आप तू तो जाओ कर मैं गेल खड़े हूं मैं मत देख ले तो भी को बहुत अंतर है। तो इवे देखो कि आपने जगह भारत सरकार ने भैया भी मोदी सरकार ने लगभग 12 साल को समय पूरा हो गया और अब 12 साल में किसाना की आय जगी सुनिश्चित करने के लिए दुगनी करने के लिए खेती के मायने नवाचार करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी अभी के विस्तार के लिए किसाना की जगह आर्थिक संबल है मजबूत करने के लिए वृद्धावस्था में जगह किसान है बिना आर्थिक सहायता देने के लिए और बहुत सारा बहुउपयोगी जगह उद्देश्य बन लेके समय समय पर अनेक योजनाओं जगह वह अपनी मोदी सरकार द्वारा चलाई गई है। भगवान 7-8 योजना जगह अपने किसानों के लिए देखो ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और अच्छे तरीके चल रही भी है।
0: भाई देखो जी हाँ एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है तो एक मैन के वह का किसाना का खाता का मैन पिसा में
1: ठीक है
0: तो वह जी हाँ 2,000 रुपये की 3 किस्त है जी साल का मैन।
1: हाँ तो भी मैंने अलग अलग टाइम पर आवे तो कोई बीज बाड़ो है वो बपरा लियो आपको कोई खेती को जो अलेवन लेना है तो वो ले ले या कटाई मान लो कोई रुखाड़ संबंधित कोई चीज बपराणो है या कोई और चीज लेनी हो तो किसान को क्या हाथ को नेड़े कोई मांगने की जरूरत कौन पड़े।
0: और आ योजना है जी किसान के लिए जी 2019 से चालू रेडी है किसान का आप थे बताओ ना जी टेम मतलब बन पीसे की जरूरत है बी टेम की है पीसा है इसका बापर जा
1: सर।
0: और एक आप जहाँ थे कह रहा हो कि भी जहाँ कोई आदमी का पीछे खड़े हो रहने जहाँ मजबूती आ जा तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है
1: अंतर है चीजों
0: को तो इनमें क्या है कि जहाँ आपा खेती करी और खेती करी भी को क्या है कि आपा आपनो निश्चित प्रीमियम है वो भरा दियो
1: ठीक है
0: चाहे खरीफ की खेती करी तो खरीफ को भरा दियो रबी की खेती करी तो रबी को भरा दियो तो भी मैं अपन किया कि बराना तो सही सही है कभी जितना भी काम मूंग बाड़ा है तभी तभी काम मूंग बताओ बाजरी बाड़ी है तभी काम बाजरी बताओ फिर क्या है कि जहाँ कोई खराब हो गया कोई प्राकृतिक आपदा आ गई कोई कीट लग गया या मतलब या मान लो कि
1: कटेबाद में फसल के भी लाग हो जाए
0: हाँ
1: कटेबाद प्राकृतिक आपदा आ
0: जाए अजा आगजनी घटना हो
1: जाए कुछ भी हो जाए
0: तो अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपने खेत की जिया मतलब कराई दी है तो अपन डरने की जरूरत को नहीं भी कमाईने खराब हो जा तो अपन क्लेम
1: कवर हो जा।
0: और दूसरी बात है कि अब खेती का मायने नए नए नवाचार आवे लग गया जिया कोल्ड स्टोरेज है वेयर हाउस है शूटिंग यूनिट है तो एक मायने देखो कह जिया किसान है जिसको पहले थे देखता कि बेमौसम की सब्जियां को नहीं होया करती
1: कौन नहीं होती
0: और अब थे टमाटर 12 मासी ले लेवले
1: हाँ कोल्ड स्टोरेज का तो कहीं पे मिल जाए
0: अब हरी मिर्च है 12 मासी ले लेवले कह रहा मतलब कि अगर आप बेमौसम की सब्जी बास है तो भी का दाम भी अपन अच्छा मिले तो भी के लिए देखो जहाँ ग्रीन हाउस है पोली हाउस है तो आके लिए भी सरकार है जी अनुदान देवे
1: दे
0: तो आप पानी को फायदा है जो उठाना चाहिए
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एक देखो क्या खेती भी डिजिटल होगी डिजिटल कृषि होगी
1: हाँ भाई जय मान लो गैल ने एक योजना चली ई नाम की कृषि मंडी है पूरी बने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ दी अब किसान जो कौन है वो आपकी फसल काट के और कोई भी मंडी का जगह भाव है ऑनलाइन देख के आपकी फसल जगह बस सीधी बेच सके ये कोई एक फायदा ओ है कि बिचौलिया जगह बा को हाथ कौन लागे कठई दलाली कौन लागी जो भी पिसो मिलनो है वो सीधो पिसो किसान के खाते में जाए तो ए जगह डिजिटल पोर्टल है या डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये भी किसाना के लिए बहुत फायदेमंद है जो आपको फायदा उठा सकता
0: भाई बहुत फायदेमंद है। फिर एक बात और देश की जो अनाज मंडी है बाकी मायन की है कि मांग के आधार पर भाव भी बांका अलग अलग
1: अलग अलग हो बिल्कुल अलग अलग
0: तो

0: मैं किसान ने अगर पोपड़िया भाव मिल जाए या कई की मंडी है जी कोई धान के लिए प्रसिद्ध हुआ, कोई जहाँ नरमे के लिए प्रसिद्ध हुआ है, तो कोई गुवार के लिए प्रसिद्ध हुआ है, कोई मोट के लिए प्रसिद्ध हुआ है, तो कोई मूंग के लिए प्रसिद्ध हुआ है, तो कोई इस सब गोड़ के लिए प्रसिद्ध है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्योंकि भी एरिया का मायने कहना मतलब कभी चीज का कारखाना ही, तो बा कारखाना का मील का हिसाब हूँ और बाका भाव ऊंचा रहे। क्योंकि अब जहाँ आप सरसों की बात करा तो सरसों का तेल काटना का जटा कारखाना ही, बटे सरसों ऊंची बिकसी।
1: ठीक बात है।
0: जटा सरसों की बड्डी मंडी है तो बीजा उपज अच्छी मिलसी। और अब की बार तो सरसों का माल भी दिखाए कि आप जब सरसों काटने लग गया ने जब 6,000 को भाव और अब 7,000 ऊपर बिकने लग दिए, तो ओ कहो मतलब कि अपन तो इस चीज को पता ही तो लाग तो अगर आप मंडिया से नहीं जुड़े
1: नहीं जुड़ेड़ा होता तो शैनी बात है।
0: और दूसरी बात है कि आपने जकी खेती है भी कमाई ने आपा कितो दम है अपनी जमीन कमाई।
1: हाँ हाँ
0: भाई अपन अपनी जमीन को बेरो पड़ जा के ई कमाई ने कितो उपजाऊ पने
1: भाई ई कमाई ने कौन सा पोषक तत्व है जका की तो अधिकता है और किसा पोषक तत्व है जका की कमी है। जमीन जकी है भी की गुणवत्ता जमीन के जको उपजाऊ पने है किसो बीज माने बस सब चीजा को अपन बेरो पड़ जाए इया को जकी काम है। तो बी के लिए भी एक अपने मोदी सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है
0: मृदा
1: स्वास्थ्य कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड जगह बोला ने। तो भी कोई ना अपने किसान भाई बार बार में बात भी करा, माटी को नमूनो लेने को तरीको भी आप बतावा के खेत के अलग अलग चारों कूणा कमाई ने बिचाले सीधा के आप जमीन ने साफ करके कोई जहाँ पाड़ो नहीं हो जंटी जंटी अगर नीचे नहीं हो साफ सुथरी जमीन हो न बटाऊ जाके और बिलाने की जमीन ने बिन साफ करके थोड़ी सी खोद के और बटाऊ बिलाने के नीचे माटी का नमूना आप ले लिया आधी आधी किलो पाव पाव जो भी है एक मात्रा में माटी ले लिया चारों पांचों जगह लेड़ी जी की माटी भी माटी ने मिक्स कर लिया सगली एकदम चौखी मिल जाए भी मु जगह चार भाग छोड़ के तीन भाग छोड़ के चौथो जगह भाग हो वो आप ले लिया लेके भी ने प्रयोगशाला मायने जांच भी दिया तो भी अपन ओ वेरो पड़ जाएगा अपनी जकी खेती है भी मायने माटी के मायने के गुण दोष है कित के जकी तत्व है पोषक तत्व की अधिकता है कौन से पोषक तत्व की कमी है।
0: तो कहो मतलब का अपन मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना ले चीज है और 3 साल बाद में उज्जू बनानो चीज है
1: भाई माटी की जगह जांच है बाद 3 साल बाद में फेरू करवा लेनी चाहिए आई तो बात है।
0: हाँ तो बीस अपन की अगर पता लाग जिसी का भी कौन सा पोषक तत्व की अपने खेत में कमी है तो बाकी ऊपर से पूर्ति करो।
1: ठीक बात है।
0: कई बार आप देखा का अनाज की बढ़वार तो बहुत अच्छी हो जाए पण भी का फल बढ़िया कौन लागे
1: कौन लागे सही है
0: तो भी कमाई खटे न खटे आपा के एक है पहले से पोषक तत्व जमीन में है और बाद ने ऊपर से और डाल दिया ऊपर से और छिड़काव कर दिया तो बे देखो के बिगोर प्रभाव रहे सी
1: अंतर तो रही है।
0: तो इस वास्ते अपनी जमीन ने जितने पोषक तत्व की जरूरत है बी के हिसाब से अपन काम में लेना है।
1: ठीक बात है।
0: एक जो किसान क्रेडिट कार्ड है केसीसी जगह बोला।
1: हाँ।
0: तो पहली क्यों तो कहे केसीसी बनानो एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती
1: चैलेंज सो यो
0: कह बे कुल 15 प्रकार का कागज तैयार कर सी और आजकल देखो कह मोदी सरकार है जो कि केसीसी बनाने की प्रक्रिया ने बहुत आसान
1: कर दी।
0: एक मायन देखो कह आपने आपने खेत की जमाबंदी गिरदावरी पासपोर्ट साइज फोटो बैंक की पासबुक आधार कार्ड के आप फसल बो रहे आप मुख जबानी बतानी है तो लिख दे और ते कुणसी बैंक में उड़ जाओ बुलाई एक दिन में काम सर जी।
1: ठीक बात है।
0: तो एक मायने आप कैसी सी उनके लोन ले ले वाने
1: और एक तरह की साख जिकी होने साख आधारित है भाई जहाँ करंट अकाउंट होने विशेष स्थिति है पिसो जो तार बाप रहे थे खाते का जमा करा दियो जरूर तो इज्जत ले लियो एक महीने खेती को जो रकबो है अपनो भी रकबे के हिसाब आपने जो लोन है वो मिल जाए
0: भाई आपनी जमीन सिंचित
1: है सिंचित है भी को अंतर है कितनी बीघा है बीघा के हिसाब जो भी या जो हेक्टेयर है हेक्टेयर के हिसाब आपने मिल जाए।
0: और फिर दूसरी बात का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने को एक फायदा भी है क कब्बे बैंक आला पर।

0: पूछा है कि भाई थारी फसल बीमा करनी है तो अपा अगर बार मना कर दे जाना तो वो प्रीमियम आपको काटे को नहीं तो क्या है फसल बीमा भी बा सगे हो आज।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और मेरा तो वही कहना है कि आप पन फसल बीमा इसकी करवाई लेनी चाहिए। क्यों कभी कमाई ने कोई इतो ज्यादा तो प्रीमियम है ही को नहीं का बरगोड़ का। और फिर भी के बाद में कई बार के हुआ है जहाँ अतिवृष्टि जा या ओलावृष्टि जा तो आपनी फसल खराब हुआ है तो भी कमाई ने अपन क्लेम है जिसको मिल जा। एक देखो के प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी कमाई ने मोदी सरकार की देन है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो इम जहाँ छोटा अर्ज का सीमांत
1: लघु किसान है
0: हाँ तो बने की है 60 वर्ष के बाद के मैंने और 3,000 रुपया प्रति महीने पेंशन मिले
1: किसानों को बुढ़ापो जुको वो सुधर जा।
0: अब भी कमाइन की है कि प्रीमियम जुको है ने वो बाकी उम्र के हिसाब से काटी जाए।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो कहो मतलब के आज देखो के आप जवान जना की है 5 रुपया चाहे जिन्हों कमा लिया लेकिन जब बुढ़ापो दो
1: ठीक बात है
0: तो बुढ़ापे के मायने अगर आप पान मान लो सहयोग मिल जावे तो आदमी को जीवन बहुत आसानी हो
1: कट जा भाई
0: कट जा।
1: अंतर है, अंतर है।
0: फिर दूसरी बात है आपने खेती के मायने कृषि तकनीक आधुनिक तकनीक और नवाचार है ए लेना को बहुत बड़ो योगदान है।
1: अंतर है,
0: आज देखो 22 से लेके और लावणी तक अब थे देखो खेता का मायने गेहूं की कटाई पहली जिया 100 मजदूर होती ने वो काम एक ट्रैक्टर है जो 5-6 घंटा में करती।
1: ओ सग सग बात और बांधे छोटा छोटा मुठिया करके बांध दिया ट्रैक्टर लेके फिरिया 4-5 फुट को जितनी रेंज है बीती रेंज में जितो जितो आ रहे हो ना बीतो बीतो लियो काटे और बांधिया बनिया चलो सागर बिको सागर रस्सी की एक जकी गिंडी हो या लट्टी जकी हो ना सागर है वह चाल बोक रहे मत काटे जून लगाया गेरिया बहुत जोर को काम हो रहे।
0: अब देखोगे पुराने टाइम का मायने आपने जब लावणी करता बी के बाद में खड़ा लगाता तो बाजरी को खड़ो काटता नाड़ोसी पड़ोसिया ऊंट मांग के लाता
1: लाता
0: धूल
1: उड़ा के देखा करता हवा ने डीकनो पड़तो पून जोर की चाल है जद उड़ाई जा
0: जद उड़ाई जा। फिर एक बात और ने पून जोर की होती जब भी उठाई जा फिर भी वो क्या है कि अनाज तो सुले को नहीं होता
1: कोनी होता कोनी होता क्यों आगे भी चल जाए तो
0: हाँ
1: तुंतड़ा मुँह सावल निकल तो भी कोनी कूट पीट के भी सावल सी ना को लाग तो कोनी
0: फिर का ता सिलात ले ना बस सिलात और लेता
1: सिलाग लेनी पड़ती सही है।
0: एर यह मान लो के गुआर को और आंखों खड़ो तो फगना जाए तो
1: आ जाए तो सा
0: फिर क्या है कि गुआर की फली होती पान अलग करता पान फिर घेसला कूट कूट के और गुआर ने अलग करता फिर भी
1: कर लो काम हो ओली के ओली के बाद ता ही जगह कई किसान है जगह थोड़ा एकला होता या जगह का आदमियों को जोड़ नहीं होता ना भाई पूरो फागन टिप जाए तो ही लागया रहता आगे ताई
0: तो आज जगह नवाचार हो जाए बस देखो किसान की जिंदगी खुशहाल तो हुई है
1: पक्की हुई है।
0: किसान है जो को देखो कि हर चीज है जो कि भी हाथ में आगी
1: आगी सा
0: कि आज बरसात हो जावे तो तीसरे दिन गांव की पूरी रोई
1: भाई जाए हाँ नहीं दस दिन तक गेल फिरनो पड़तो वांगे
0: लावणी लग गया तो यहाँ मान लियो 15 दिन का मन लावणी है जी हो जा
1: बिल्कुल।
0: और पहले देखो मन डेढ़ महीने लावणी को नहीं आया
1: को नहीं आया करती मतलब किसान जो को वो खेत में जाके डाणी बना के रहा कर तो स्थिति आई समझ गया ना।
0: और मतलब कह रहा हूँ मतलब के आज किसान है जो अगर थोड़ा सो विवेक
1: जागरूक है जागरूक है थोड़ा सो बुद्धि काम ले विवेक ने काम में ले
0: तो बहुत बढ़िया बात
1: हाँ अचीव कर सके।
0: तो अब एक लोक रचना और सुन लिया
1: बिल्कुल सुना सा
0: तो सुनो सा लोक रचना

0: तो अभी अपन डगलाराम और साथिंग गाड़ी लोक रचना सुनी। और अब देखो आपने चर्चा ना आगे बढ़ावा कि भाई आप खेती बाड़ी की बातचीत कर ली। अब देखो आपनों जो कार्यक्रम है अभी कमान पशुधन की बात भी करा
1: करा सा
0: और विशेष तौर से जगह दुधारू पशु है। बाको क्या है कि किसान की आय कमान बहुत बड़ो योगदान।
1: ओ ऐसा
0: तो ई वास्ते देखो पहली बात तो आ है कि आप पशुधन ने रखा तो पाने सांतरे तरीके से रखा
1: ठीक बात है
0: कि एक तो नियमित रूप से

0: आके जहाँ दूसरी बात पानी दिन में तीनों चार बार पियावा, ठंडो पानी पियावा, साफ सुथरो पियावा। अब जो कि बाकी पशुशाला है ठाण है वो देखो पक्को होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ढालू होना चाहिए। दूसरी बात है हवादार होना चाहिए, धूप सीधी नहीं लागनी चाहिए। गर्मी को वक्त है, जो सर्दी हो जो तो सीधी हवा नहीं लागनी चाहिए, गर्मी हो जाए सीधी धूप नहीं लागनी चाहिए। और पशु का दूध देखो जाड़ में वह तो बिने जो पशु आहार है वो अपन ने संतुलित जो है वो देना चाहिए, जगह हम प्रोटीन की कैल्शियम की मात्रा जकी है वह बराबर हो।
1: तो अपन की है गए पशु का बुत्ते सारू बिन खानो दानो देनो
0: बिल्कुल।
1: फिर की है वह कहे अब जी ही मौसम बदले ने बियाई की है परजीवी है ए बड़ा सक्रिय हो तो अपन ने हिसाब किताब वो राखनो चाहिए कि परजीवी है बंद के है कि पाका घर मिटाना बहुत जरूरी है। तो भी कले थे बताए उन्होंने बार कर जिया मालूम डालू पक्को परस हुआ है तो बिंब घर कौन बना सके,
0: कौन बना सके।
1: अगर वह पशुओं का शरीर का ऊपर अगर आपको घर बना लियो तो आजकल बहुत प्रकार की दुआएं चल रही
0: चल रही
1: तो बस पशु ने लानो चाहिए
0: भाई। एक सीधी है जो दुआई उन्हें तो मौसम के हिसाब पशु नुआना चाहिए। दूसरी बात जहाँ दूध का डापा पशु को तो भी टेम से पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा पांच बोला इको जो घोल है पानी को जो दूध काटना पहले दूध काटने बाद थना धोना जरूरी है क्योंकि पशु के थनेलो रोग को नहीं हो। दूसरी बात है हर छह महीना में अपन पशु के टीका लगवाना चाहिए, पेट कमाइन कीड़ा मारने की दवा है वह दवा अपन देनी चाहिए पशु चिकित्सकों सलाह करके। और खुरपका मुंहपका रोग है या गलघोंटू रोग है इस टाइप का जका भी रोग है बाकी अपन टीकाकरण नियमित करवाना चाहिए। तो यूं क्या है अपन पशु जो है वो स्वस्थ रहो, दूध जो है वो अपन बराबर मिलते रहो, उत्पादन में सुधार होगा।
1: और एक जी हिसाब से भाई पशु कोई बीमार शिमार पहली बात हो ही नहीं वो जा तो भी कमाने कोताही नहीं बरत के और तुरंत है जो देखो पशु चिकित्सक दिखाना बहुत
0: जरूरी है। जरूरी है
1: आजकल देखो क्या गांव गांव है हर पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर पशुशाला की व्यवस्था हो रही है तो यहाँ नहीं है कि आप जड़ी बुंटी प्या बोगरा अपन की है चिकित्सक ने दिखा के बैज को दवाई पानी दे वो पशु देना चीज है
0: जरूरी है
1: जिससे कि अपने पशु है जो निरोग हो जाए
0: बिल्कुल शानी बात है।
1: और अब देखो आपने कने वक्त पड़े तो एक लोक रचना सुना दिया
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो सुनो आ लोक रचना।

0: माने अब के बचाले मेरी माए मांगीलाल पुजारी और साथ अंगाड़ी आलो प्रश्न सुनी
1: ई मीठी सी लोक रचना का सागे आज को कार्यक्रम खेती और गृहस्थी अठे ताई फेरो मिलर ताई पंकज भाई ने
0: और राजकुमार भाई ने सीख दिरो करा
1: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

सबसे पहले सुनते हैं अलका याग्निक और अमित कुमार की आवाज, फिल्म का नाम है होटल। गीतकार इंदिवर, संगीतकार उषा खन्ना।

अभी आप सुन रहे थे होटल फिल्म का गीत। आवाजें थी अमित कुमार और अलका याग्निक की। आइए आप सुनते हैं अनवर की आवाज। फिल्म का नाम है हम हैं लाजवाब। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आइए अब सुनते हैं

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और उनके साथियों को। फिल्म का नाम है हिसाब खून का। गीतकार अनवर सागर, संगीतकार बप्पी लहरी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

आइए अब सुनते हैं हमारा खानदान। इस फिल्म का गीत आवाजें मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल की है। गीतकार फारूक कैसर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ अनुराधा पौडवाल को। फिल्म का नाम था हमारा खानदान। गीतकार फारूक कैसर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार, आशा भोंसले और उनके साथियों को। फिल्म का नाम है

0: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 110.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज एट 9। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली।

0: दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ

0: डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधान सौधा के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाई बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जल्दी से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन

0: 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। Headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जी पी एस डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मॉनसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है। इसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं, फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको है फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए।
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि ऊपरी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी है कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद है, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है और जुताई करने के साथ साथ उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए जमीन के अंदर जाए या हमारी फसल को मिले और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम प्रयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसर इंस्टीट्यूट को हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है क्या पूर्वानुमान है उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं।

हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है, और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों का एजुकेट

0: योगदान देती हैं,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हराश नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मॉनसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है जो लॉन्ग फील्ड एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें ±4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वही मध्य भारत में और दक्षिण वैली भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से 4 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मॉनसून ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
2: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
0: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहाँ पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जाकर, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से एसआरआई विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई

0: सीधा वास्तविक कणों से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्था पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है, जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए। खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात या मध्य भारत की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है, जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं, और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है, और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है और वो हमारे प्रयास रहेगी, किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें बहुत बड़ा योगदान
1: करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पे और उसमें हमारे सक्षम है, और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं, तो जो प्रशांत महासागर, जो मध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है, ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है, उसमें उनका जो रुख होता है, ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं, ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें, तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है, तो भारत में जो वर्षा है उसमें कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारत वर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है, जब ला नीना कंडीशन होती है, तब भारत वर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर देखें, एक तरह जनरली हम बात

0: है तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि एलिनो कंडीशन यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एलिनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले है, जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एलिनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशंस है डेवलप करने के गाइडेंस जो है सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है, यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है, प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वह सामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए ये भी एक कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है, प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उनको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉइल टेस्टिंग, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में

0: का वो उसका रहता है, और निराई गुड़ाई समय पे होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरीगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30-35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब फसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वॉर्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसानों पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और साथ में जो हमारे मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम

0: दिनों में बहुत भारी बारिश जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
1: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की यानी कि ये कितनी

0: परसेंट जो है बढ़ जाती है, यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की वाटर वेपर की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट कंडीशन होती है ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये घटना इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके तो उसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
2: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों में चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है। क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी स्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ आपकी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में एक रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करे। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस पर भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले एक दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप।
0: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम विज्ञान, अगर पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है मौसम विज्ञान बाकी, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत

0: रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है। इसके वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए इम्प्रूवमेंट हुआ है और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है और एआई एमएल को यूज करके यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल, मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे सितार पर राग देश। कलाकार हैं रईस खान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आज आपने सुनी सितार पर राग देश, कलाकार उस्ताद रईस खान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ पलों में होगा।

FM 107 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सबसे पहले सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में ये गजल।

0: इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में होंगे। इन समाचारों को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस

0: करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।